0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अपने संबोधन में श्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने एक संकल्प और समर्पण के साथ देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में देश ने नई रफ्तार पकड़ी है और नई गति से आगे बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मोबाइल विनिर्माण तक हर क्षेत्र में कई गुणा उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के तहत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
1: हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक

0: होगा, चाहते हैं कि वो भारत में हो, और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तब पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने एक दशक के भीतर ही 100 करोड़ देशवासियों को सामाजिक सुरक्षा का कवर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की वजह से भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता और पारिवारिक रिश्ते इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार जताया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भी शामिल हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। इनके अतिरिक्त नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले का कल समापन हो गया। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में एआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध करने और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुराब में हुए हवाई हमलों के वीडियो इस बात का प्रमाण है कि बलूचिस्तान में स्थानीय आबादी के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की गई। भारत श्रीलंका के बीच खेले जा रहे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। 2 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। बारिश के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक देशों से होकर गुजरी सूर्य पथ तिरंगा वैश्विक रैली सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
3: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
2: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
3: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
2: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही हैं। उन्होंने लोगों से महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
3: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
2: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर श्री मोदी ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के अंतर्गत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
3: जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिन तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रैली कल संपन्न हो गई। ये रैली फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रैली में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रैली का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
4: छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
2: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन तमिलनाडु की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में सरस डेयरी परिसर के नए संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। वे विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। झारखंड

0: लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने विरोध के नए कार्यक्रमों की घोषणा की है।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत आज झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। रांची में पुतला दहन कार्यक्रम अल्बर्ट टिक्का चौक पर आयोजित किया जाएगा। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी एसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य भर के पात्र नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराना है।
3: लगभग 15 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का नगद उपचार शामिल है। आयुष्मान भारत कार्ड प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को निशुल्क जारी किए जाएंगे। राज्य के कुल 1307 निजी और 627 सरकारी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत उपचार प्रदान करेंगे। लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र न होने वालों के लिए आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 80 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उड़ीसा की बैतरानी नदी में बाढ़ से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित है। एक रिपोर्ट।
4: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि बैतरणी नदी में बाढ़ की चौथी लहर आ गई है। भद्रक जिले के अखुआपदा में नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर को पार कर गई है और आज सुबह 7 बजे तक 18.38 मीटर पर बह रही थी। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि भद्रक जिले के कई गाँव अलग थलग पड़ गए हैं। राजघाट पर सालंदी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जहाँ खतरे का स्तर 17 फीट है और नदी 16.50 फीट पर बह रही थी। गेंगुटी और कोकिला नदियां भी उफान पर है। IMD ने मयूरभंज और बालेश्वर के लिए रेड वार्निंग और 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मंगलवार तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शतरंज में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद मुकेश। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शक्ति की सप्तधारा का आह्वान, प्रधानमंत्री ने लाल किला के के प्राचीर से कहा, सात शक्तियां भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, 80 पर देश, जुबां पर युवा। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लाल किला से वंदे मातरम की गूंज के बीच मोदी ने राष्ट्रगीत गाया, फिर तिरंगा लहराया। आम्बेडकर, नेहरू, पटेल और मुखर्जी का योगदान याद किया।

0: प्रवक्ता के अनुसार दिमागी नक्सल अराजकता और हिंसा फैलाने के रास्ते खोज रहे हैं। दैनिक जागरण के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी का मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग, 1 करोड़ युवाओं को AI प्रशिक्षण का ऐलान, कहा महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ आए राजनीतिक दल। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री का लाल किला से संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने को अपने शासन की बड़ी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल कर कुछ ताकतों पर करारी चोट की है। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, बस्तर के 93 गांवों में पहली बार दिखी तिरंगे की ताकत, नक्सल प्रभावित रहे इन गांवों में आजादी के बाद स्वतंत्रता दिवस का सार्वजनिक आयोजन। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, युवा कौशल के उचित उपयोग से देश को हो सकता है भारी लाभ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की, इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा, अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi urges all parties to support implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies to strengthen women's contribution in shaping India's policies. Prime Minister announces free online coaching for competitive exams aspirants to ease financial burden on their families. 1 crore youths to be trained in artificial intelligence in next 1 year. Suryapath Tiranga, first of its kind campaign involving Indian missions in over 50 countries, concludes in San Francisco. Government rolls out foreign asset disclosure scheme for small taxpayers. And in chess, world number one Magnus Carlsen retains eSports World Cup title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has announced to provide free online coaching for students belonging to poor and middle-class families. In his address to the nation, Mr. Modi said, the move is aimed at easing the financial burden of aspirants preparing for competitive exams. He said this will save thousands of crore rupees of middle-class families in coaching classes.
3: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
2: The Prime Minister said that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things, cost, quality and skill.
3: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
2: The Prime Minister said today India is making its place in the world of sports. Mr. Modi said in 2030, India will host the Commonwealth Games. Prime Minister Narendra Modi has urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies without making it a political fight. In his Independence Day address to the nation from the ramparts of the Red Fort, Mr. Modi asked them to step forward to honour women and ensure that country's women secure 33% representation in the legislative assemblies and the Lok Sabha as soon as possible. He said that women should be given the opportunity to contribute to shaping India's policies.
3: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: कहते हैं कुछ सफर मंजिल तक पहुंचने के लिए होते हैं और कुछ सफर ऐसे होते हैं जो वापस आकर भी हमारे अंदर चलते रहते हैं। कभी ट्रेन की खिड़की से बाहर भागते पेड़, कभी सड़क किनारे की चाय और कभी किसी अनजान शहर में मिली कोई अपनी सी आवाज। तो आज की सुबह सफर की उसी खूबसूरत याद के नाम आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM, जिसका प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी। न्यूज ऑन एयर ऐप पर आप हमें लगातार सुन सकते हैं ऐप के माध्यम से 24x7, बशर्ते आपको इसी धरती पर, पृथ्वी पर रहना होगा, तभी आप हमें सुन पाएंगे। तो भाई, आज की जो सुबह है इसमें भी कोई ना कोई सफर आप जरूर कर रहे होंगे और उसी सफर की खूबसूरत याद के नाम आपको हमें बताना है कि आपका सबसे सबसे यादगार सफर कौन सा है। और साथ रहूंगी इस सफर में आपके मैं, आपकी दोस्त माला।

जी हाँ, जैसे ही हम आपसे मिलने आते हैं या आप हमसे मिलने आते हैं तो समाज जो है वो अपने आप खूबसूरत हो जाता है। और हमारे पास, हमने जो आपसे सवाल पूछा था कि कौन सा सफ़र आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा यादगार रहा, उसके लिए मैसेजेस आना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। रजनीकांत पाटिल वाडवन से कह रहे हैं कि भाई केदारनाथ यात्रा उनकी ज़िंदगी में यादगार सफ़र रहा। तो वैदेही ने कहा है कि गुड मॉर्निंग के साथ साथ कि मैं अभी धरती पर ही हूँ। प्रमोद चिंचोलकर कह रहे हैं कि भाई हमारा यादगार सफ़र तिरुपति बालाजी था, जब हम वहाँ गए थे और ये हमारी ज़िंदगी का यादगार सफ़र रहा। वहीं विजेंद्र खटोल अकोला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज महोड़ भी हमें सुन रहे हैं, गुड मॉर्निंग उन्होंने बोला है आपको भी। और ये मैसेज हमारे पास पहुँचा है प्रकाश शिंदे की तरफ से। प्रणव शिंदे साथ में है और ये कह रहे हैं कि आज एक्टर सैफ अली खान, एक्ट्रेस मनीषा कोइराला और मशहूर डायरेक्टर डेविड धवन साहब तीनों का जन्मदिन है, तो इन सभी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। जिंदगी का सफर बेहद खूबसूरत है, बशर्ते हम हर मोड़ का आनंद लेना सीख लें। जब हम जीवन की यात्रा को खुले दिल से स्वीकार करते हैं ना, तो मुश्किलें भी हमें एक नया सबक और एक नई राह दिखा जाती हैं। जिंदगी एक सफर है, इसे खुशी से तय कीजिए। जो बीत गया उसे भूलकर आने वाले कल पर भरोसा करिए। सफर सिर्फ चलने का नाम नहीं है, बल्कि चलते चलते खुद को तलाशने और सुकून पाने का जरिया है। हर एक सफर कुछ ना कुछ सिखा ही देता है, चाहे मंजिल मिले या ना मिले, हमें इंसान जरूर बना देता है। तो भाई आप बताते रहिए हमें कि कौन सा यादगार सफर आपकी जिंदगी में शामिल है। आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम चल रहा है, मस्त मुंबई है, आ चल के तुझे लेके चलूं। और आज हम आपको कहीं नहीं ले जाएंगे, बल्कि जानेंगे आपसे कि कौन सा यादगार सफर आपकी जिंदगी में आपके साथ जुड़ा है। कॉल कीजिए हमें, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज 8657661071 8657661071, क्योंकि हम आपको सारे जहां से ज्यादा मोहब्बत करते हैं।

तो भाई आपने हमारा हाथ थाम लिया है फिलहाल इस लम्हे में, और हमने आपका हाथ थाम लिया, और हम बने हुए लगातार आपके साथ आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो 107.1 FM पर 8:53 और ठीक 15 सेकंड हो चले हैं और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी।

लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है वो पंढरपुर मेरे गांव से। और जब मैं स्कूल की पढ़ाई कर रहा था ना, तो पिताजी ने नई साइकिल खरीद कर दी थी। वहीं छुट्टी के दिन सोचा कि चलो साइकिल से पंढरपुर चले जाते हैं। 4 घंटे में पंढरपुर पहुंचा। थोड़ी थकान तो आ गई थी, लेकिन जब वहां विट्ठल और रुक्मिणी माता के दर्शन किया तो पूरी थकान छूमंतर हो गई। ये साइकिल का सफर आज भी उन्हें हमेशा याद रहता है। तो भाई इसी तरह आपके वो यादगार सफर के लम्हे आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। नंबर एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, 8657661071। रविवार की ये खूबसूरत सुबह है, कल हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे और आज एक और छुट्टी पा रहे हैं। तो इस छुट्टी के दिन हमारे साथ शेयर कीजिए कि जिंदगी का वो कौन सा यादगार सफर था। इतने में ही पंकज मोहड़ का मैसेज हम तक पहुंचा है अमरावती से, और वो कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी का यादगार सफर है साल मार्च 2021 में जब वो पुणे गए थे और ये सफर उन्हें आज भी याद है। तो भाई आपका वो कौन सा यादगार सफर शेयर कीजिए हमारे साथ। लेकिन एक बात और आपको बता दें कि जब भी कोई पुराना गीत बजता है और अचानक लगता है जैसे वक्त ने पीछे मुड़कर आवाज दे दी हो और वक्त कहता हो पहचाना मुझे। गीतों की यही तो खूबसूरती है, ये सिर्फ सुने नहीं जाते, ये हमारी जिंदगी के किसी ना किसी खूबसूरत पल में बस जाते हैं। तो आज अगर कोई पुराना गीत आपको आपकी प्यारी सी याद भी दिला दे तो उस याद को भी जाने मत दीजिएगा, थोड़ा सा ठहरिएगा और उस याद को फिर से जी लीजिएगा।

तो भाई ये जो जादू नगरी है ये अपनी मुंबई नगरिया ही है, क्योंकि मुंबई की सुबह का अपना ही अंदाज है। कहीं लोकल की रफ्तार, कहीं समंदर की लहरें, कहीं मंदिर की घंटियां और कहीं चाय के कप से उठती हुई भाप। शहर तेज जरूर है लेकिन इसके बीच ऐसे छोटे छोटे पल भी हैं जो दिल को सुकून दे जाते हैं, और शायद इसीलिए मुंबई लाखों लोगों के लिए सिर्फ शहर नहीं, एक एहसास की तरह है जिसे हर दिन लाखों लोग चाय के प्याले में भर कर पी जाते हैं।

तो भाई इस मोहब्बत की तो रिसर्च करनी पड़ेगी। आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर आपने सुना रूना लैला को, घरौंदा फिल्म का ये खूबसूरत सा नगमा था। और कार्यक्रम चल रहा है मस्त मुंबई आ चल के तुझे लेके चले, साथ बनी हुई लगातार आपके आपकी दोस्त माला और हमारे साथ आप बड़े दिल से दिल तक जुड़ जाते हैं। विजेंद्र घटोला कुला से कह रहे हैं कि ये मेरी बिटिया की फोटो है, उन्होंने एक प्यारी सी फोटो भेजी है बच्ची की और उसका नाम भी हमें लिख कर बताया है कि ईश्वरी नाम है बच्ची का उनकी। वहीं प्रमोद चिंचोलकर कह रहे हैं कि गाना तो उन्हें बहुत ही पसंद आया। उमरी अकोला से इन्होंने हमें मैसेज किया। दीपाली शिरोडकर कह रही है कि भाई मेरा बैंगलोर जाने का जो सफर था वो हमेशा यादगार रहा और वहां पे था वृंदावन गार्डन और उसमें जब उन्होंने चंदन के बड़े बड़े पेड़ देखे ना तो वो उनकी जिंदगी में यादगार रह गए। फिरोज सिकंदपुरिया कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ फिरोज जी। पंकज मोहड भी जुड़े हुए हैं लगातार और उन्होंने भी माना कि भाई मुंबई लाखों लोगों के लिए एक शहर नहीं है, ये एक एहसास है। प्रमोद कारखानेस पुणे से हमें सुन रहे हैं। वहीं राकेश माथुर भी जुड़ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा यादगार सफर 3 साल पहले सिक्किम की हॉलीडेज थी जो अब तक की सबसे खूबसूरत यात्रा थी मेरी जिंदगी की। और राकेश माथुर हमारे साथ जुड़े हैं पुणे से और ये मैसेज हमारे पास आया है सुजाता और चंद्रशेखर फुटके का, परली वैजनाथ बीड़ से। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो फैमिली के साथ और एक फ्रेंड की फैमिली के साथ हम बेंगलुरु और ऊटी गए थे। आज दोनों बच्चे इंजीनियर बन चुके हैं और अपनी अपनी नौकरी पर लगे हुए हैं। करीब 20 साल पहले का ये जो सफर है ना वो आज भी मुझे बहुत याद आता है। तो भाई इसी तरह अपने यादगार सफर के लम्हों को हम तक पहुंचाते रहिए आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो पर। अंजू अंधेरी ईस्ट से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और प्रणव शिंदे कह रहे हैं कि भाई एफएम रेनबो के साथ चलने वाला सफर हर दिन का सफर यादगार होता है, हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है और अच्छी अच्छी बातें जो हैं सोचने पर भी हमें मजबूर कर देती हैं। कोडाई कनाल का सफर फिरोज सिकंदपुरिया की जिंदगी में बहुत ही खूबसूरत था। आपकी जिंदगी में कौन सा खूबसूरत सफर था जरूर बताइए हमें 8657661071 पर। इससे पहले कि हम आपको अगला गाना सुनाएं, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।

0: एक लेते हैं और फिर सुनाएंगे एक और खूबसूरत नगमा ऑन एफएम रेनबो।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: आजादी का जश्न BSNL के संग फ्रीडम ऑफर। सिर्फ ₹1 में पाएं 1 GB डेटा रोज, 100 SMS रोज, अनलिमिटेड कॉलिंग और 24 दिन की वैधता। सीमित अवधि का खास ऑफर। हर दिल जुड़े, भारत बढ़े। BSNL के साथ आगे बढ़ें। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-1503 पर कॉल करें।

0: भाई ये डगरिया तो आज हमने आपके लिए चुनी है कि आपकी जिंदगी का कौन सा यादगार सफर है जब आप निकले थे सफर पर और वो हमेशा आपके दिल में बना रह गया। तो दीपा जी बिल्कुल निराश मत होइए, आपका मैसेज हम जरूर शामिल करेंगे। दीपा जी ने कहा है कि उनका जो फेवरेट सफर था वो हेलीकॉप्टर सफर था, नियाग्रा वाटरफॉल्स जब वो अमेरिका गई थी वो उनके लिए हमेशा यादगार रह गया। वहीं प्रमोद चिंचोलकर को नदिया के पार फिल्म का ये जो गाना है वो बहुत पसंद आया। अनिल परशुराम सावंत सांता क्रूज पूर्व से हमें मैसेज लिख रहे हैं। श्रेय राउत, मिलेश गजानन राउत और आर्य राउत टिघरेपाड़ा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश काशीनाथ वैश्वी और ज्योत अविनाश कडू वाड़वन टिघरेपाड़ा से हमें सुन रहे हैं। वहीं प्रणव शिंदे जो है वो कह रहे हैं कि ये जो गीत हमने सुनाया अभी आपको, हेमलता जी का भी आज जन्मदिन है, नदिया के पार फिल्म का गाना इन्होंने गाया है, तो इनको जन्मदिन की बधाई। और विजेंद्र घटोल अकोला से वो कह रहे हैं कि खेत में हम खेती करते करते आपका प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। राजेंद्र परमार हमारा स्वागत कर रहे हैं, हम भी आपका स्वागत कर रहे हैं, इसी तरह जुड़े रहिए सुनते रहिए। हितेंद्र दास गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, आपको भी गुड मॉर्निंग। 9:22 आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो कार्यक्रम मस्त मुंबई आचल के तुझे हम लेके चल रहे हैं आज आपके सफर पर। वैसे मौसम बाहर कैसा भी हो, दिल का मौसम अगर अच्छा हो ना तो दिन अपने आप खूबसूरत लगने लगता है। एक प्यारी सी मुस्कान, किसी अपने का फोन, पसंदीदा गीत या सुबह की पहली चाय, खुशी के लिए हमेशा कोई वजह नहीं चाहिए, तो आज अपनी खुशी की वजह आप खुद बन जाइए और मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट किसी और की सुबह को भी बहुत ज्यादा खूबसूरत कर सकती है।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। 9:30 पर आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, और 10 होंगे समाचार, और 10:02 पर एक बार फिर आपके साथ जुड़ जाएगी आपकी दोस्त माला लेकर कार्यक्रम नमस्ते भारत। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर, क्योंकि आपका प्यार हमें आपसे मिलने के लिए मजबूर करता ही रहता है।

0: आइए सुनते हैं हमारा साप्ताहिक प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
1: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि पिंगली वेंकैया का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 2 अगस्त। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के 2 भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से रूपा झा और जबलपुर से मनीषा साखरदांडे। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
2: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
3: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
2: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
3: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
2: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

कुछ आवाजें समय के साथ खो नहीं जातीं, वो आने वाली पीढ़ियों के भीतर एक स्मृति दीप बनकर जलती रहती हैं। कुछ जीवन उम्र की लंबाई से नहीं, अपने संकल्प की ऊंचाई से बड़े होते हैं। वो मिट्टी धन्य हो जाती है जहां वो पैदा होते हैं, क्योंकि अपनी मातृभूमि के लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे शहीद बंता सिंह संखवाल। बंता सिंह का जन्म 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पंजाब के जालंधर जिले के संगवाल नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम बलवंत सिंह था, लेकिन आगे चलकर वो बंता सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके पिता सरदार बुधा सिंह एक साधारण किसान थे, लेकिन उनके विचार अत्यंत ऊंचे थे। उनका परिवार अपनी राष्ट्रभक्ति और नैतिक मूल्यों के लिए जाना जाता था। यही कारण है कि बचपन से ही बंता सिंह ने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना सीख लिया था। माता गुजरी देवी के संस्कारों ने उन्हें गढ़ने का काम किया। बंता सिंह की आरंभिक शिक्षा उनके गांव और पास के प्राथमिक विद्यालय में हुई। वो बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। इसके साथ ही वो बेहद साहसी और न्यायप्रिय थे। उन दिनों भारत पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। गांवों में निर्धनता थी, किसानों पर अत्याचार हो रहे थे और युवाओं के सपने दम तोड़ रहे थे। धीरे धीरे बंता सिंह का बाल मन इन परिस्थितियों को समझने लगा था। जब वो डीएवी स्कूल जालंधर में पढ़ रहे थे, तभी कांगड़ा जिले में भूकंप आया। बंता सिंह घर से जब पढ़ने जाते तो भूकंप पीड़ितों के लिए अनाज की बोरियां ले जाते। धीरे धीरे बंता सिंह युवा हुए और उन्होंने देखा कि उनके अनेक साथी बेहतर जीवन की तलाश में विदेश जा रहे हैं। उन्होंने भी विदेश जाने का निर्णय लिया। आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चले गए। लेकिन ये एक सामान्य यात्रा नहीं थी। ये यात्रा एक योद्धा की यात्रा साबित हुई, जो अपने भीतर एक नए युग का सूर्य लेकर चल पड़ा था। अमेरिका में रहते हुए ही उनके भीतर

विदेशी सरजमी पर रहते हुए बंता सिंह ने महसूस किया कि भारतीयों के साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा है, उनके आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाई जा रही है। उन्होंने गदरी लहर में कूदने का फैसला कर लिया। गदर पार्टी के प्रधान बाबा सोहन सिंह भकना ने पुस्तक मेरी राम कहानी में लिखा, हमारी सभी विपत्तियों की जड़ हमारी गुलामी है, इसे खत्म करने के लिए हमें शूरवीरों की जरूरत है। उनके इस आह्वान पर सबसे पहले अपना नाम पेश करने वालों में प्रमुख नाम भाई बंता सिंह का था। धीरे धीरे बंता सिंह गदर पार्टी के एक विश्वसनीय कार्यकर्ता बन गए। इसी बीच सन 1914 का साल आया, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। गदर पार्टी के नेताओं ने इसे स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक अवसर के रूप में देखा। निर्णय हुआ कि सभी क्रांतिकारी भारत लौटेंगे और अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष छेड़ेंगे। बंता सिंह भी अपने साथियों के साथ भारत लौट आए। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये युवा क्रांतिकारी कुछ ही समय में भारतीय स्वाधीनता के इतिहास का अमर अध्याय बन जाएगा। अमेरिका से भारत लौटकर बंता सिंह ने आसपास के गांव के लोगों को जगाना शुरू किया। उनके विचारों से प्रभावित होकर कई लोग उनके साथ चल पड़े। उन्होंने संघवाल में पंचायत की स्थापना की और सरकार के विरुद्ध प्रचार आरंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने गांव में एक विद्यालय और पुस्तकालय खोला। गांव में पशुओं का अस्पताल भी खोला गया। गांव की पंचायत में हत्या को छोड़कर सभी मुकदमों का फैसला किया जाता था। गांव में गदर साहित्य छापने के लिए एक प्रिंटिंग प्रेस भी लगाया गया। बंता सिंह ने पूरे जिले का दौरा किया और लोगों के बीच गदर आंदोलन का साहित्य वितरित किया। वो लोगों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने तथा अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का संदेश देने लगे। अनेक युवा उनके साथ थे। वो विरोध स्वरूप उन्हें रेलवे लाइन से छेड़छाड़ और टेलीफोन के तार काटने जैसी विध्वंसकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करते थे। वो कहा करते थे कि स्वतंत्रता उन्हीं को प्राप्त होती है जो उसके लिए लड़ने का साहस रखते हैं। बंता सिंह को उनके चार अन्य साथियों के साथ गदर पार्टी ने भारत भेजा था। उनका उद्देश्य भारतवर्ष में 1857 की क्रांति की तर्ज पर सशस्त्र क्रांति के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना था। इसके लिए जनता को संगठित करना था। सशस्त्र क्रांति हेतु हथियार और अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी वो निभा रहे थे। उनके मन में बस एक ही लगन थी, लगन आजादी की।

बंता सिंह लगातार क्रांति गतिविधि में सक्रिय थे। संगवाल में उन्होंने एक मजबूत क्रांतिकारी केंद्र स्थापित कर दिया था। ये दुआबा क्षेत्र का मुख्यालय बन गया था। यहाँ महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, करतार सिंह सराभा, हरनाम सिंह टुंडीलाट, बीबी गुलाब कौर, बाबा साहेब सिंह और मान सिंह सियालकोटी जैसे क्रांतिकारी अक्सर आया करते थे। बंता सिंह द्वारा स्थापित ये केंद्र पंजाब में गदर आंदोलन की रीढ़ साबित हुआ। बंता सिंह के जीवन का मात्र एक उद्देश्य था, भारत की आजादी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कपूरथला के शस्त्रागार पर हमला कर दिया और हवलदार भगवान सिंह को अपने साथ मिला लिया। 25 अप्रैल सन 1915 को उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर नगल कलां होशियारपुर के जेलदार चंदा सिंह की हत्या कर दी। इस घटना के बाद अंग्रेज सरकार तिलमिला उठी। 82 गदर क्रांतिकारियों पर साजिश का पहला केस दर्ज हुआ, लेकिन बंता सिंह फरार हो चुके थे। गदर क्रांतिकारियों ने गुप्त रूप से बैठक की तथा हथियार जुटाने के लिए अमृतसर जिले के मननवाला रेलवे स्टेशन के पास वल्ला पुल पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने की योजना बनाई। इस दल का नेतृत्व बंता सिंह को करना था। 11-12 जून सन 1915 की रात को बंता सिंह ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया और 6 सर्विस राइफल्स और 200 कारतूस अपने अधिकार में ले लिए। इस हमले में उन्होंने 2 सिपाहियों फूल सिंह और चतर सिंह को मार दिया। वहीं जेलदार कपूर सिंह की हत्या की कोशिश में भी उनका नाम आया। इस घटना के बाद ब्रिटिश शासन में हड़कंप मच गया। ब्रिटिश सरकार ने बंता सिंह पर भारी इनाम घोषित किया। बंता सिंह को पकड़ने के लिए चारों ओर जाल सा बिछा दिया गया। गांव-गांव में उनकी तलाश शुरू हुई। बंता सिंह उस समय अपने गांव के आसपास गुप्त रूप से रह रहे थे, लेकिन अब भी वो अपने साथियों से संपर्क बनाए हुए थे। वो लगातार भविष्य की योजनाओं पर विचार कर रहे थे, लेकिन उनके एक निकट संबंधी ने धन के लालच में आकर अंग्रेज अधिकारियों को उनकी सूचना दे दी। इस मुखबिर के विश्वासघात का परिणाम हुआ कि बंता सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के तहत उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें 2 पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। पूरे मुकदमे के दौरान बंता सिंह जरा भी घबराए नहीं और पूरी निर्भीकता के साथ अपने क्रांतिकारी विचारों को अदालत के सामने रखा और देश के लिए अपनी निष्ठा जताई। बताया जाता है कि गिरफ्तारी से लेकर फांसी की सजा तक उनका 11 पौंड वजन बढ़ गया था। 12 अगस्त सन 1915 को लाहौर के सेंट्रल जेल में उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। नमन ऐसे अमर बलिदानी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी एफ एम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। वक्त हो चला है 10:08। आइए आपको इस घंटे की ताजा तरीन खबरों की जानकारी दे दें। कल 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन भी किया गया। 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे महाराष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के मंत्रालय में और राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने पुणे स्थित लोक भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मुंबई और उपनगरों में अगले 3-4 घंटे तक आमतौर पर मौसम साफ रहेगा। हालांकि पालघर, ठाणे, रायगढ़ में मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार यहीं समाप्त होते हैं।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार मुंबई। 15 अगस्त की देशभक्ति से सराबोर कल की सुबह के बाद आज 16 अगस्त है, यानी तिरंगा तो वही है मगर दिल में आज भी उसकी चमक ताजा है। मैं हूं माला और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। नमस्ते भारत, मेरा दिल मेरी बातें। आज जरा देश की बात करेंगे मगर मुस्कुराते हुए, क्योंकि आजादी का मतलब सिर्फ इतिहास को याद करना नहीं है, अपनी जिंदगी को अपनी पसंद के रंगों से सजाना भी है। और आज की सुबह में बॉलीवुड का रंग भी है, क्योंकि आज अभिनेता सैफ अली खान और निर्देशक डेविड धवन, मनीषा कोइराला और सिंगर हेमलता का जन्मदिन है। तो चलिए देश की बातों के बीच फिल्मी यादों की एक सुरीली खिड़की भी खोलते हैं। नमस्ते भारत, मेरा दिल मेरी बातें में माला के साथ।

तो भाई 16 अगस्त 1970 को जन्मे सैफ अली खान के लिए अभिनय की दुनिया में प्रवेश शायद आसान हमें दिखाई देता हो, लेकिन उनका सफर सिर्फ किसी खानदानी पहचान की एक कहानी नहीं है। उन्होंने शुरुआत में कई उतार चढ़ाव देखे, फिर धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बनाई। रोमांस से लेकर हास्य, कॉमेडी और सीरियस भूमिकाओं तक उन्होंने रोल किए। दिल चाहता है कि समीर से लेकर ओमकारा के लंगड़ा त्यागी तक उन्होंने साबित किया कि अभिनेता की असली पहचान उसके किरदारों की विविधता से बनती है। यानी दिल ने अभिनय चुना तो रास्ते में किरदार बदलते चले गए और कलाकार निखरता चला गया। जन्मदिन पर सैफ को याद करने का इससे अच्छा बहाना क्या होगा कि एक ऐसा गीत जिसमें उनकी फिल्मी दुनिया की हल्की सी शरारत महसूस हो उसे बजाया जाए। क्या कहते हैं?

आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम कार्यक्रम नमस्ते भारत, मेरा दिल मेरी बातें, और आपकी बातें भी हम जरूर शामिल करेंगे। लेकिन अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अभिनेता सैफ अली खान का जन्मदिन, और इसी के साथ जन्मदिन है आज निर्माता निर्देशक डेविड धवन का। 16 अगस्त 1955 को जन्मे डेविड धवन ने ऐसे तो एडिटिंग से शुरुआत की थी अपने करियर की, और बाद में वो निर्देशन की दुनिया में आ गए। आंखें कुली नंबर वन, हीरो नंबर वन जुड़वा, और न जाने बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। तेज रफ्तार कहानी, गुदगुदाते संवाद और कलाकारों की मस्त केमिस्ट्री, उनकी फिल्मों में एक बात अक्सर दिखाई देती थी, जिंदगी चाहे जितनी भी उलझी हुई हो, हंसने की जगह हमेशा बचाए रखनी चाहिए। और शायद यही तो मेरा दिल मेरी बातें का भी रंग है। गंभीर बात कहिए मगर चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, इस गाने की तरह।

और भाई आप सभी सुनने वाले हमारे हीरो नंबर वन हैं, तो हम आपको कैसे भूल सकते हैं। आपका नाम लेना तो बनता है। विनायक और रोहिणी बगाड़े वाई जिला सतारा से हमें सुप्रभात बोल रहे हैं। सुप्रभात आपको भी। और साथ ही साथ ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है करण राठौर संदीप सिंह का, और कोलकाता से ये हमारा प्रोग्राम जो है लगातार सुन रहे हैं FM रेनबो पर। और श्री राउत मिलेश गजानन राउत भी हमें लगातार सुन रहे हैं। साथ ही आर्य मिलेश राउत टिगरेपाड़ा से लगातार जुड़े हुए हैं।

0: नंजे नवी मुंबई से हैप्पी संडे बोल रहे हैं। अजय साखरे इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र परमार तो ओले ओले लिख ही रहे हैं। प्रमोद चिंचोलकर भी, मनीषा कोइराला, सैफ अली खान को हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। और ये मैसेज है बाबा का दादर से। और पंकज महोड भी अमरावती से जुड़े हुए हैं लगातार सुबह से हमारे साथ। रजनीकांत पाटिल वाडवन भी, दीपा पालकर भी गानों का मजा ले रही हैं। विजेंद्र घटोल अकोला से हैप्पी बर्थडे के लिए। जितने लोगों के बर्थडे हैं उतने ही केक उन्होंने हम तक वर्चुअल मीडियम से पहुंचा दिए हैं मैसेज के माध्यम से। और प्रणव शिंदे, प्रकाश शिंदे तो सुन ही रहे हैं, साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि डेविड धवन साहब जी के जन्मदिन पर कुछ पंक्तियां उन्होंने लिख भेजी हैं। कुली नंबर वन साहब का हर अंदाज निराला है, साजन चले ससुराल जैसा आपने सबको हंसा डाला है, जुड़वा खुशियां मिले आपको जीवन के सफर में, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सा रौब रहे आपकी उम्र भर में, दीवाना मस्ताना होकर मनाए आप ये खास त्योहार, बीवी नंबर वन और परिवार से मिले सदा आपको अपार प्यार, राजा बाबू की तरह चमके हमेशा आपकी किस्मत का सितारा, हीरो नंबर वन बनकर रहे आप, यही दुआ है हमारी, पार्टनर बनकर खुशियां आपकी जिंदगी में हमेशा आए और मुझसे शादी करोगी जैसी ब्लॉकबस्टर यादों के साथ आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। राम प्रजापति वसई से, दत्तात्रेय आदित्य वेलापुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये मैसेज टिगरेपाड़ा से, मनीष भालचंद्र पाटिल वाड़वन टिगरेपाड़ा से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और श्री राउत, मिलेश राउत, आर्य मिलेश राउत भी सुन रहे हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि अगला तड़कता फड़कता गाना हम आपको सुनाएं, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

भाई ये वो शब्द है जो हम आपसे भी बहुत ज्यादा करते हैं आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर, तभी तो जुड़ जाते हैं आपके साथ दिल से दिल तक। कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते भारत, मेरा दिल मेरी बातें, और आपके दिल की बातें भी हम जरूर सुन रहे हैं और शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो भाई प्रकाश शिंदे ने लिखा है कि आज के दिन सुप्रिया पिलगांवकर का भी जन्मदिन है, तो उन्हें भी जन्मदिन की बधाइयां। और साथ ही साथ श्रीधर मुजारकर का भी मैसेज हम तक पहुंच चुका है, बाबा दादर से उन्हें गाने पसंद आ रहे हैं। पंकज मौड भी कह रहे हैं कि भाई ये इलू इलू मेरा पसंदीदा गाना है। साथ ही प्रमोद चिंचोलकर ने भी कुछ ऐसा ही मैसेज हम तक पहुंचा है, फिरोज सिगिनपुरिया को कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। दुर्गेश मरकाम जो है छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम कुमार गुजरात से हमें सुन रहे हैं, और वहीं मनीषा कोइराला को हैप्पी बर्थडे बोला है मनीष भालचंद्र ने वाड़वन टिगरे पाड़ा से। तो भाई आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इस तरह जुड़े रहिए सुनते रहिए। तो मनीषा कोइराला जी का भी बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनका एक ऐसा गाना शायद आप भूल चुके हो, दिमाग में कहीं बसा हो, वो हम आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर।

तो वैसे ये प्यार जो है वो जानने की नहीं करने की चीज है, और हमने कल आजादी का जश्न मनाया था, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल आज भी ये घूम रहा है कि आजादी जो है हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसी दिखाई देती है, शायद उस लड़की में जो अपने मन का विषय चुनकर पढ़ रही है, या फिर उस युवक में जो अपनी पसंद का काम शुरू करने के साहस को जुटा रहा है, या उस परिवार में जहां हर सदस्य की राय सुनी जाती है। आजादी सिर्फ खुले आसमान का नाम नहीं, अपने भीतर की संभावनाओं को खुला छोड़ देने का नाम भी है। और जब अपनी आजादी के साथ हम दूसरे की गरिमा और अधिकार का भी सम्मान करते हैं, तभी लोकतंत्र की खूबसूरती पूरी हो पाती है। तो आज 16 अगस्त को तिरंगे को सलाम, अपनी जिंदगी की उस छोटी सी आजादी को भी सलाम जो आपको आप बनाने की कोशिश करती है।

तो भाई ये तो काम आपको खुद ही करना पड़ेगा, ये काम हम आपके लिए नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम आपके साथ बने रह पाएंगे आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। तो मुंबई, आज का मेरा दिल मेरी बातें में देश भी था, सिनेमा भी, और उन छोटी छोटी खुशियों की बात भी जिनसे जिंदगी सचमुच अपनी सी लगती है। सैफ अली खान साहब का बर्थडे, डेविड धवन साहब का बर्थडे, मनीषा कोइराला मैम का बर्थडे, और साथ ही साथ सुप्रिया पिलगांवकर का बर्थडे, हेमलता जी का बर्थडे, हमने साथ ही साथ सबका सेलिब्रेट किया। और इन सभी के गानों ने, फिल्मों ने, कलाकारी ने हमें हंसने के ना जाने कितने बहाने दिए। और आपसे बस इतना कहना चाहूंगी कि कल हमने तिरंगे को आसमान में लहराते हुए देखा था, और आज उसी तिरंगे की भावना को अपने व्यवहार में जिंदा रखिए, क्योंकि देश सिर्फ बड़े मौकों पर नहीं, हमारी रोज की छोटी छोटी छोटी छोटी अच्छी बातों में खूबसूरत बन जाता है। मैं हूं माला, आप सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर, नमस्ते भारत, मेरा दिल मेरी बातें। और आज का आपका रविवार, उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही मुस्कुराता रहे और आने वाला जो पल हो वो भी मुस्कुराता रहे। फिलहाल माला को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो पर, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं आगे भी, और ये वादा करती हूँ कि जल्द ही माला आपसे मिलने के लिए आएगी। और छोड़ जा रही हूँ आपको जुड़वा टू के इस खूबसूरत नगमे के साथ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। वक्त हो चला है 10:57 और ठीक 32 सेकंड। आइए आपको इस घंटे की ताजा तरीन खबरों की जानकारी दे दें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज 2 दिन की तमिलनाडु यात्रा पर जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में सरस डेयरी परिसर के एक नए संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने महा डीबीटी पोर्टल पर 29 नई योजनाएं शामिल की हैं। इसके साथ ही पोर्टल पर उपलब्ध योजनाओं की कुल संख्या बढ़कर 105 हो गई है। इससे नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। शतरंज में विश्व नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंड मास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। इसी के साथ आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार यहीं समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: आकाशवाणी
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111
2: नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं धर्मेंद्र मणि राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम का फॉलो अप प्रोग्राम है और उनके द्वारा लिए गए विषयों का विस्तार है। इस बार मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय खेलों के बारे में बहुत सी बात की थी। पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ कहा था।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है।
2: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना प्रधानमंत्री जी के मन की बात का वो अंश जिसमें उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय टीम को देशवासियों की तरफ से शुभकामनाएं भी दी थीं। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और आशीर्वचनों के बाद तो ग्लासगो में कमाल ही हो गया। हमारे खिलाड़ियों ने न सिर्फ शामिल किए गए खेलों में पिछली बार से ज्यादा पदक जीते बल्कि मैदान से पोडियम तक की इस यात्रा में कई इतिहास भी रच दिए। इस दौरान खेल के मैदान पर भारत की बेटियों की ताकत को भी पूरी दुनिया ने देखा। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ भारतीय खेल प्राधिकरण साई के उपमहानिदेशक और आईपीएस मयंक श्रीवास्तव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हमारे साथ हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन, आपका भी बहुत स्वागत।
5: धन्यवाद।
2: तो अब मैं अपने मन में उठ रही जिज्ञासा और सवालों के साथ साथ आप श्रोताओं के प्रश्नों को लेकर भी तैयार हूं अपने स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से उसका जवाब जानने के लिए। सवालों की शुरुआत करते हैं मयंक श्रीवास्तव जी के साथ। मयंक जी, प्रधानमंत्री जी ने अपने साथ साथ देशवासियों की तरफ से ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक के लिए मैदान पर पसीना झोंक रहे खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी और पदक जीतने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री जी के मन की बात के इन शब्दों ने जैसे जादू की झप्पी का काम किया और उनके शब्दों के बाद ऐसा असर हुआ कि पदकों की झड़ी सी लग गई और हमारे खिलाड़ियों ने कमाल ही कर दिया। पिछली बार के पदकों का आंकड़ा पीछे छूट गया, क्या आपको लगता है कि कमाल प्रधानमंत्री जी के ऊर्जावान शब्दों का असर था?
4: निश्चित रूप से, हम लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी खेलों के सबसे बड़े लवर हैं और वो बहुत चाहते हैं कि भारत के खेलों की उन्नति हो और उसका जीता जागता उदाहरण है जिस प्रकार की स्कीम भारत सरकार ने उनके मार्गदर्शन में लेके आए हैं, जो कि नया खेलो इंडिया है और जो टॉप स्कीम है। आप अगर देखेंगे इन खिलाड़ियों का जो भी इनका रिकॉर्ड है और जहां से भी इनको सहायता मिली है, यदि आप उनका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि खेलो इंडिया और टॉप स्कीम का बहुत बड़ा योगदान था। तो न सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों की प्रेरणा इन खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी पूंजी थी बल्कि वो जो योजनाएं लेके आए हैं खेल के क्षेत्र में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस अभूतपूर्व प्रदर्शन के लिए।
2: और राजा रमन जी, अब तो ये जाहिर सी बात है कि जब खुद प्रधानमंत्री जी खेल में इतनी रुचि लेते हो तो खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होना तो स्वाभाविक सी बात है। तो आप मानते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी खुद इतना इंटरेस्ट लेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा तो आएगा ही आएगा।
5: 2014 से ये देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा ही खिलाड़ियों से गेम्स के पहले मिलते हैं, गेम्स के बाद मिलते हैं। खिलाड़ी को पता है कि देश के सबसे बड़ी व्यक्ति का प्यार उनको मिला है, उनके मार्गदर्शन में अच्छे नतीजे आए हैं, चाहे

0: वो टोक्यो ओलंपिक गेम्स की बात क्यों ना हो, पेरिस की बात क्यों ना हो, पिछले बार एशियाई खेलों की बात क्यों ना हो, या कोई भी राष्ट्रमंडल खेल की बात क्यों ना कर ले, खिलाड़ियों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है कि हमारा देश हमारे साथ है। जब भारत सरकार का इतना सपोर्ट मिलता है, एक टाइम था जब आपको 3-3 महीने वेट करना पड़ता था, आप अपना प्रपोजल दे रहे और प्रपोजल के 3 महीने बाद आपको पता चला कि क्लियरेंस आधा हुआ है या नहीं हुआ है। आज की तारीख में क्लियरेंस 3 या 4 दिन में मिल जाता है, खिलाड़ी जब मांगता है तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और जो सॉफ्ट पावर है खेल, इसको प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं, उसका पूरा फायदा भारत देश को मिल रहा है। आप देखेंगे पिछले सालों में भारत का जो स्तर है वो उठता जा रहा है और इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
1: और मैं जी, हमने अन्य क्षेत्रों की तरह नए भारत में खेल के क्षेत्र में भी बदलाव को देखा है और महसूस किया है। प्रधानमंत्री जी के मैदान से पोडियम तक की सोच और खेलों को भी अन्य क्षेत्रों की तरह महत्व देने की रणनीति का भारत के खेलों पर कितना सकारात्मक असर हुआ है?
2: निश्चित रूप से, पहले भी बात कर चुका हूँ उनके विजन की, उनकी दूरदृष्टि की और किस प्रकार से भारत सरकार ने नई योजनाएं ले आई है। खेलो इंडिया और टॉप्स, ये दोनों स्कीम इसी मोटो को चरितार्थ करती है जिसको आपने भी कहा, मैदान से पोडियम तक को। क्योंकि खेलो इंडिया आपको ग्रास रूट क्षेत्र में सपोर्ट प्रारंभ करती है, और ये पहले जो खेलो इंडिया का स्वरूप था मैं उसको 360 डिग्री सपोर्ट बोलता था। एक खिलाड़ी को, इकोसिस्टम को, वो 360 डिग्री सपोर्ट करती थी। अभी जो नई खेलो इंडिया कैबिनेट ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश और उनके मार्गदर्शन में पास की है वो 720 डिग्री सपोर्ट है। और टॉप्स को तो मैं तथास्तु स्कीम बोलता हूँ। शायद ही ऐसी योजना कभी भी आई हो कि जिसमें में खिलाड़ी जो कि टॉप्स एथलीट है, एलीट एथलीट है, टॉप्स का कोर एथलीट है, वो कुछ भी मांगता है जनरली उसको दिया जाता है। ये इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम इन दोनों योजनाओं ने खड़ा किया है कि आज खिलाड़ियों के लिए किसी भी जगह पे, किसी भी स्थान पे और किसी भी करियर के उनके किसी भी पड़ाव पे जो समस्याएं हैं उसका कोई असर नहीं होता है
1: जी। और राजा, एक कहावत बड़ी मशहूर हुआ करती थी या है भी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। क्या आज भी ये कहावत सच दिखती है? अगर नहीं तो आम लोगों के बीच खेलों को लेकर सोच में कितना और कैसा परिवर्तन आपने महसूस किया?
0: रविंद्र, पूर्ण रूप से बदल चुका है। आज की तारीख में आप खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब वाली बात है। ये मेरी बात नहीं, प्रधानमंत्री जी की बात है। और ये सच है कि खिलाड़ी को आज पता है, खिलाड़ी के घर वालों को पता है कि आप खेल के माध्यम से अपना पूरा जीवन संभाल सकते हैं। आपको पढ़ाई की जितनी जरूरत थी वही जरूरत आज खेल की महसूस हो रही है लोगों को। अगर आप एक्सेलेंस की ओर बढ़े जा रहे हो तो आप पढ़ाई शायद कम कर लें, लेकिन आप खेल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के दिल को जीत सकते हैं, राज कर सकते हैं। ये कई खिलाड़ियों को समझ आ गया है। और अगर हम खेलो इंडिया मिशन, जो नई मिशन पिछले दिनों लॉन्च हुई है, उसकी अगर बात करें तो पिछले खेलो इंडिया स्कीम से अगर कंपेयर करते हैं तो 8 गुना पैसा बढ़ा है 5 सालों में। करीब 36,000 करोड़ की बात हो रही है। ये कम पैसे नहीं होते धर्मेंद्र। एक देश की सरकार अगर जुड़ जाता है खेलों के साथ इस तरीके से, जाहिर सी बात है कि आगे ही बढ़ेगा देश। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे एथलीट का डेवलपमेंट हो, चाहे कोचेस का डेवलपमेंट हो, चाहे सपोर्ट स्टाफ का या स्पोर्ट्स साइंस की बात करें, हर तरीके से आगे बढ़ने की बात हो रही है। अगर हम सही तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं और पूरा फायदा उठाते हैं इस स्कीम का, तो भारत 2036 के जो ओलंपिक गेम होपफुली भारत में ही आयोजन होंगे, वहां पे अच्छा प्रदर्शन, अच्छे नतीजे, 20 मेडल उनके आसपास या टॉप 5 वाली पोजीशन का पूरा उम्मीद लेके बैठ सकते हैं
1: जी। तो मैं जी, पहले हमारे खिलाड़ी मैदान तक तो पहुंचते थे लेकिन पोडियम तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। इसकी वजह खेल संसाधनों की कमी थी, मैदान की कमी थी, और साथ ही साथ खेलों के जरिए नौकरी ना मिल पाने की एक जो सोच थी वो बड़ी समस्या थी। बहुत से बच्चे इन दुश्वारियों के चलते चाहकर भी खेलों की तरफ नहीं जा पाते थे, करियर नहीं बना पाते थे। अब नए भारत में इन बुनियादी मुद्दों पर कितना काम हुआ है?
2: मैं तो ये बोलूंगा कि आपने जो पहली लाइन बोली कि खिलाड़ी मैदान तक तो पहुंच जाते थे, वहां से ही शुरू करता हूँ। एक्चुअली मैदान तक भी नहीं पहुंच पाते थे। वजह ये थी कि अगर आप एनालाइज करें, विश्लेषण करें, तो आप ये पाएंगे कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में, हमारे करीब 750 से थोड़े से ऊपर डिस्ट्रिक्ट है, सभी जगह खेलों का एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम नहीं था। खेलो इंडिया जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से उद्भूत ये योजना है, इसमें सबसे पहले ये कमी महसूस की गई कि सारे जगहों पे, सारे स्थान स्थानों पे कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है, तो ये तय किया गया कि हर जिले में हम कम से कम एक खेलो इंडिया सेंटर खोलेंगे। खेलो इंडिया सेंटर वो एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होगा, वो जगह होगी जहां पे खिलाड़ी आएगा और खेलेगा। कम से कम 25 खिलाड़ी वहां पे खेलेंगे एक पर्टिकुलर खेल का, हर जगह पे एक एक खेल का हम सहायता देंगे। तब ये दूसरा

0: प्रश्न आया कि भाई इतने कोच हैं, कोच ही नहीं थे, तो जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको पास चैंपियन एथलीट बना करके उनको एम्प्लॉय किया गया, उनको बतौर कोच इन खेलो इंडिया सेंटर्स में रखा गया, तो पुराने खिलाड़ियों को भी रोजगार मिला, तो एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ हर जगह पे ग्रास रूट पे। दूसरी बात यह है कि सिर्फ ग्रास रूट पे करने से तो काम चलेगा नहीं, थोड़ा एलीट लेवल पे भी होना चाहिए। तो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलेंस हर राज्य की राजधानी, हर यूटी की राजधानी में ये खड़ा किया गया, भारत सरकार ने इसका पैसा दिया, और इसमें स्पोर्ट्स साइंस जो अब तक भारत के खेलों में सम्मिलित नहीं होता था उसमें बहुत बड़ा एक निवेश था। इसमें स्पोर्ट्स साइंस के जो जितने पद होते थे भारत सरकार सभी का पे देगी और इत्यादि इत्यादि मशीनें देगी, उसका सामान देगी, तो एक एलीट सिस्टम भी खड़ा हो गया। भारत सरकार को यह भी गुमान था कि सारा कुछ वही नहीं कर पाएगी, तो कुछ लोग प्राइवेट लोग भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उनको खेलो इंडिया अक्रेडिटेड अकेडमी बनाया गया। तो इस प्रकार से एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ। अब ये खिलाड़ी खेलेंगे तो इनको खेलने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक अनुभव वाला एक हमें खेल का प्रतियोगिता देनी चाहिए, तो खेलो इंडिया गेम्स का एक सिस्टम शुरू हुआ। यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम, विंटर गेम, पैरा गेम, विंटर गेम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से पहले जब से ये शुरू हुआ है खेलो इंडिया में, भारत में कोई जानता नहीं था विंटर गेम। नेशनल गेम्स तो होते हैं, ओलंपिक और एशियन गेम्स के साथ पैरा गेम्स भी होते हैं, परंतु ये प्रथा नहीं थी। और ये पैरा गेम्स शुरू हुआ खेलो इंडिया में, वो भारत में एक तरह से नेशनल गेम है पैरा स्पोर्ट्स में। तो अब यहाँ से खिलाड़ी जो खेले, जिनको हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव दिया, अपनी कम्पिटेटिव स्किल को निखार सके, उनको एक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट कमेटी खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में एंड डेवलपमेंट वाले वर्टिकल में से उन्होंने उसमें से प्रतिभाशाली खिलाड़ी चुने, उन खिलाड़ियों को खेलो इंडिया एथलीट बनाया, जिनको 10,000 रुपए आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस और जहां पे ट्रेनिंग करते हैं उनको वित्तीय सहायता करीब 6 लाख की वो भारत सरकार ने दिया। 360 डिग्री सपोर्ट था, ये वो सिस्टम है। अब इसी में से जो खिलाड़ी उन्नति किया वो टॉप्स जैसे सुपर एलीट लेवल पे आ गया। टॉप्स में एलीट खिलाड़ी जो मांगता है जनरली वो मिलता है। अब नए वाले सिस्टम में क्या है, 720 डिग्री सपोर्ट कैसा है, पहले जिन चीजों की चिंता की थी उससे आगे बढ़ गए। हमने देखा कि आईटी सपोर्ट नहीं है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को नहीं है, साई को नहीं है, तो इसमें नए वाले खेलो इंडिया में आईटी सपोर्ट का एक वर्टिकल खड़ा हुआ। सबसे बड़ी समस्या इस देश में है कोच की, कोच कहाँ है और स्तरीय कोच कहाँ है। तो कोच का विकास के लिए एक कोच डेवलपमेंट एंड सपोर्ट स्टाफ डेवलपमेंट का वर्टिकल खड़ा हुआ। तो सिर्फ कोच की बात नहीं है, स्पोर्ट साइंस जिसकी मैंने अभी बात की उसका पूरा एक सिस्टम खड़ा होगा, इको सिस्टम खड़ा होगा, उसमें लोग खड़े होंगे, वैज्ञानिक खड़े होंगे, बायो मैकेनिक्स खड़ी होगी, मैसर खड़ा होगा, न्यूट्रिशनिस्ट खड़ा होगा। अब ये पूरा एक सिस्टम जो है बन के आ रहा है, और ऑन टॉप ऑफ दैट खेलो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ने जो एक वर्टिकल है खेलो इंडिया का, उसने पूरे देश में जो अधोसंरचना है उसकी एक समझ लीजिए उसमें क्रांति ला दी है। पूर्व में 300 से भी अधिक अधोसंरचनाएं खड़ी हुई थी, नए वाला जो खेलो इंडिया है इसमें और ज्यादा इसमें सपोर्ट है और त्रिस्तरीय सपोर्ट है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हमने पहले खेलो इंडिया सेंटर की ही बात की जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात की, अब नए वाले में स्कूलों में भी खेलो इंडिया सेंटर होंगे। स्कूल में न बच्चे सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि खेलेंगे भी, और भारत सरकार उसको फंड करेगी ऐसे खिलाड़ियों को। साथ ही साथ और बहुत से कॉलेजेस उनको भी खेलो इंडिया सेंटर या सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना पाएंगे हम लोग। तो ये बहुत बड़ा एक सिस्टम खड़ा हो रहा है। पहले तो मैदान तक नहीं पहुंच पा रहे थे, अब न सिर्फ वो मैदान पे पहुंचेंगे बल्कि अपनी खेल प्रतिभाओं को कंपटीशन और लीग से निखारेंगे, उनकी प्रतिभाओं का सम्मान होगा, टैलेंट स्काउट होंगे, कम्युनिटी कोच होंगे जो उनकी प्रतिभाएं देखेंगे, ग्राम स्तर पे भी देख पाएंगे क्योंकि कम्युनिटी कोच और जो टैलेंट स्काउट है वो ग्राम ग्राम स्तर तक जा सकेंगे। जोनल टैलेंट सर्च कमेटी बनेगी और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट कमेटी तो पहले से थी। तो इस प्रकार से ये पूरा एक इकोसिस्टम खड़ा हो गया है जिसने भारत के खेल जगत को एक क्रांति उसने कर दी है।
1: बिल्कुल क्रांति आई है, और जो खिलाड़ियों के ऊपर मानसिक दबाव हुआ करता था कि खेल के मैदान नहीं है, सुविधाएं नहीं है, वो सारे दबाव उनके मन से हटे हैं। और हमने बहुत सारी गंभीर बातें कर ली हैं, और इन गंभीर बातों के बीच अब थोड़ा सा मूड को हल्का किया जाए, और हम जानना चाहेंगे कि आपको वो कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं, और अगर अभी हम आपको सुनाना चाहें तो वो कौन सा गीत होगा?
0: एक्चुअली मैं बचपन से बहुत सारे गाने सुनता हूँ, अगर आप उनमें से एक सुनने को बोलते हैं तो वो मुझे जो समझ में आ रहा है, मुझे बहुत पुराना गाना याद आ रहा है, किसी की मुस्कुराहटों पे वो निसार। मैं तो कुंदन लाल सहगल इरा से अभी अरिजीत सिंह के इरा तक के गाने सुनता हूँ, तो वही मुझे पहले दिमाग में स्ट्राइक किया।
1: तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: और इस सुमधुर गीत के बाद फिर लौटते हैं प्रधानमंत्री जी के मन की बात और अपने विषय मैदान से पोडियम तक की तरफ। और राजा, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में पीवी सिंधु की जापान की सफलता का जिक्र किया और वो जीत सचमुच अविस्मरणीय रही, क्योंकि किसी भारतीय खिलाड़ी ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन में ट्रॉफी जीती है। सिंधु की ये जो जीत रही, इसने ट्रॉफी का जो एक लंबे समय का उनका सूखा था, न सिर्फ उसको खत्म किया बल्कि एक उम्मीद भी जगाई है। उनकी इस सफलता से आप कितने प्रभावित हुए हैं?
1: कोई भी खिलाड़ी जब ऐसा प्रदर्शन करता है या करती है, जाहिर सी बात है देश का हर वो व्यक्ति खुश हो जाता है, खास करके पीवी सिंधु जैसे खिलाड़ी की बात करें, क्योंकि आप देखिए उनके पास 5 विश्व चैंपियनशिप के मेडल्स हैं, वो चैंपियन भी रही है, उसके अलावा उनके पास 2 ओलंपिक पदक भी है और बेहतरीन खिलाड़ी रही है, कई सालों से भारत का रिप्रेजेंटेशन करते आई है और 2 साल से उनके पास कुछ था नहीं दिखाने के लिए, सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में, फर्स्ट राउंड में। जब हार एक खिलाड़ी के पीछे लगातार पड़ जाती है तो उस खिलाड़ी के अंदर शंका पैदा हो जाती है कि एम आई गुड इनफ, क्या मैं अभी भी अच्छा खिलाड़ी हूँ, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। वो शंका को दूर

0: करने वाली बात हो गई टोक्यो में। और जापान में जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि रही है सिंधु के लिए। शादी के बाद एक महिला खेल सकती है, उन्होंने दिखाया है, टोटल फोकस के साथ दिखाया। हम सबके लिए एक सबक है कि किसी को राइट ऑफ ना करें। शायद उनमें से मैं भी था कि सिंधु पे डाउट होने लग गया कि सिंधु अभी आगे करेगी क्या, सिंधु के बाद कौन होगा, ये सारे सवाल आ गए थे। लेकिन सिंधु ने एक बार फिर अपने और ध्यान को आकर्षित किया है, टेरिफिक परफॉर्मेंस। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, सिंधु एक प्रेरणा है और हमेशा रहेगी
1: जी। और मैंग जी, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि सिंधु से हम लगातार सफलता की उम्मीद करते हैं, एक आदत सी हो गई उनकी सफलता की, उनके ट्रॉफियों की। पिछले कुछ वर्षों में अगर हम खासतौर पर पिछले 2 साल की बात करें तो वो पीक पर अपने नजर नहीं आ रही थी। तो ऐसे में जापान ओपन की ये जो कामयाबी है उनकी वापसी की तरफ इशारा करती है, या फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि देश के लिए वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे चुके?
2: नहीं, बिल्कुल मैं राजा राम जी की बात से सहमत हूँ, इसको वापसी ही मानेंगे हम लोग तो बिल्कुल मानते हैं। और मैं आपको कुछ अंदरूनी जैसी बातें बता सकूं तो सिंधु बहुत फोकस्ड प्लेयर है
1: जी।
2: और सिंधु की जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो लाजवाब है। मानसिक क्षमताओं में भी उसके अंदर बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है, उसका फोकस बहुत बड़ा है। फोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हमारा बेंगलुरु केंद्र है, रीजनल सेंटर, वहां के जो स्पोर्ट्स साइंस सेटअप है, मैंने एक बार वहां पे देखा था, सिंधु आई थी, उनका फोकस एकदम क्लियर है कि ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में, इसका क्या है। उन्होंने बकायदा चेकअप कराया, उसका एक सोल्यूशन निकलवाया और उस चीज पे वर्क किया। तो अगर ये खिलाड़ी इतने अनुभवी होने के बाद ये इस स्तर पे स्पोर्ट्स साइंस के लेवल पे चीजें सोच रहे हैं तो ये उनका फोकस, उनका एक ये दिखाता है कि वो उसमें पूरी तरह से रमे हुए हैं। मुझे लगता है कि सिंधु में अभी मतलब एलिट 28 तक मुझे वो काफी सक्रिय और काफी सक्सेसफुल दिखाई देती है
1: जी। और राजा रमन जी, साल 2028 ओलंपिक ईयर है, ऐसे में 31 साल की 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट सिंधु के लिए टूर्नामेंट को चूज करना और अगले 2 सालों तक फिटनेस को बनाए रखना कितना जरूरी है?
0: बहुत जरूरी है धर्मेंद्र, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि प्लेयर के सामने चुनौती है, लगातार टूर्नामेंट खेलने पड़ते हैं रैंकिंग पॉइंट्स जमाने के लिए और रैंकिंग बना के रखने के लिए। क्योंकि सबको पता है कि ओलंपिक गेम्स में क्वालिफिकेशन रैंकिंग के बदौलत होती है। अगर आप टॉप 16 में है तो आपका गारंटी स्पॉट बन जाता है, उसके बाहर होते हैं तो मुश्किल होता है आपका क्वालिफिकेशन, क्योंकि कम खिलाड़ियों को बुलाते हैं, कुछ कोटा देना पड़ता है, या तो फिर आप एशियन गेम जीत के दिखा दें या फिर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बने या फिर टॉप रैंकिंग में बने रहे। तो सिंधु के सामने एक चुनौती रहेगी कि अपना रैंकिंग बना के रखना होगा और इसके लिए लगातार खेलता रहना पड़ेगा उन्हें। और दिस इज अ चैलेंज, क्योंकि एक तो उम्र उनका बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनके अंदर जो ऊर्जा है उसको सही दिशा में चैनलाइज करके सिंधु इज फेसिंग द चैलेंजेस। और मुझे पूरा विश्वास है कि लॉस एंजलिस 2028 तक वो रैंकिंग भी बना के रखेगी और फिर वहां पे बहुत बेहतरीन प्रदर्शन भी करेगी।
1: बैडमिंटन से जुड़ा एक और सवाल है कि भारत में जो है बैडमिंटन की बेहद मजबूत परंपरा रही है, उस परंपरा को खासकर महिला बैडमिंटन के जरिए साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ने एक बड़ा ऊंचा मकाम दिया है, उस स्तर को बनाए रखने के लिए बैडमिंटन की नई पौध मयंक जी कितनी दमदार दिखाई देती है?
2: बैडमिंटन में बहुत ही अच्छी संभावनाएं हैं। आपने तो केवल महिला खिलाड़ियों की बात की, पर मुझे लगता है कि पुरुष खिलाड़ी भी इसमें कम नहीं है। बहुत सारे अभी खिलाड़ी अंडर 18, हालिया एक टूर्नामेंट हुआ है, उस टूर्नामेंट में उस 18 प्लेयर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बॉडीली भी वो बहुत अच्छा एडवांटेजियस पोजीशन में है। इसके अलावा जो आपने बात की कि महिला खिलाड़ी विशेष रूप से ज्यादा उनके अंदर संभावना है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। मैंने जितना इन लोगों का प्रदर्शन देखा है, न सिर्फ प्रदर्शन की बात है, जिस प्रकार से अपने खेल को ये अप्रोच करती है, जिस प्रकार से अपने खेल को सीरियसली लेती है और जिस प्रकार से इनका फोकस है, ये सभी खिलाड़ी, मेरा काडर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के ऐसे खिलाड़ियों को देख करके, अभी गुवाहाटी कुछ दिन पहले मैं गया था जहाँ पे एक बहुत अच्छी एकेडमी है और कोरियन, रशियन और मलेशियन कोच वहाँ पे हैं, जिनके भाई जो है BAI बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो वहाँ पे ट्रेनिंग कराती है अपने प्लेयर्स को। तो इनका फोकस देखकर, उनका प्रोफेशनलिज्म देख करके और उनका अम्बिशन देख करके मुझे बिल्कुल लग रहा है कि आगे आने वाले समय में मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि एशियन गेम्स में कुछ सरप्राइज भी हो जाए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाला जो ओलंपिक है उसमें भी कुछ सरप्राइज हो जाए।
0: मैं आपको बता दूं
1: जी,
0: उन्नति हुडा जैसे प्लेयर उभर कर आई है, अस्मिता चलिहा जैसे प्लेयर उभर कर आई है, और न सिर्फ सिंधु और साइना नेहवाल की बात कर सकते हैं, हम ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोन्नप्पा की भी बात कर सकते हैं, और गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जॉली, ये भी दुनिया में अच्छा प्रदर्शन देते आए हैं। खिलाड़ी को चोट लगता है, कुछ खिलाड़ी बाहर हो जाते हैं, लेकिन भारत का बैडमिंटन बहुत अच्छे हेल्थ में है। मेरा ये मानना है कि हमें हमेशा डाउट होता है कि सिंधु के बाद कौन, लेकिन ये युवा खिलाड़ी आई है, ये जवाब दे रही है हम सबको।
2: इसमें चिराग और उसको भी हम लोग राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। सात्विक और चिराग को आप बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं।
0: लक्ष्य सेन खेल ही रहा है,
2: लक्ष्य सेन भी अच्छा खेल रहा है, और अभी भले उसकी कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि उसने, लेकिन ही स्टिल इन द फ्रे, एंड चिराग और ये लोग तो बहुत अच्छे उसमें हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। एशियन गेम्स में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, हम लोग बिल्कुल इसका एक मुजाहिरा जरूर देखेंगे वहाँ।
1: बिल्कुल, अब आगे बढ़ने से पहले एक गीत सुनते हैं। राजा, अब आप बताइए कि आपकी पसंद का वो कौन सा गीत सुना जाए।
0: मयंक जी ने मुकेश जी का गाना चुना था, मैं भी मुकेश जी का ही गाना चुनूंगा। मेरे से भी पहले एक गाना था जो आज भी मेरे ख्याल से हम सबके लिए रेलेवेंट है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
1: वाह क्या बात है।
3: फोटो

0: दोस्तों, इस गीत के बाद कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आपका फिर स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के मन की बात में खेलों के बारे में की गई चर्चा की। हमारे आज के दो मेहमान हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के उप महानिदेशक और IPS मयंक श्रीवास्तव जी और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। राजा, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में लॉर्ड्स मैदान में खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारतीय टीम की शानदार सफलता का जिक्र किया था। इसे उन्होंने भारतीय पुरुष टीम की 1983 की विश्व कप की विजय से जोड़ा। ये जुड़ाव स्वाभाविक भी है क्योंकि उस कामयाबी के बाद हमने दुनिया को अपनी क्रिकेट महाशक्ति होने का एहसास कराया था। महिला टीम की टेस्ट क्रिकेट में ये जीत उसे इस लॉन्ग फॉर्मेट का सुपर बनाने की दिशा में कितना मदद करेगी?
1: बहुत ज्यादा। मुझे ये लगता है कि भारत कई सालों से महिला क्रिकेट की अगर बात करें तो टेस्ट मैचेस की ओर ध्यान नहीं दिया था और लॉर्ड्स में जाकर टेस्ट मैच खेलना और पहले ही मैच में मेजबान इंग्लैंड को पराजित करना, ये बहुत बड़ी बात है और दिखाता है कि हमारी महिला टीम के अंदर जो जोश है, जो ऊर्जा है, जो बिलीफ है,

0: जो एक स्वाभिमान वाली बात है, ये बहुत अच्छी बात है देखने को मिला है। वहां पे शतक भी जड़े हैं हमारे खिलाड़ी, 5 विकेट इन एन इनिंग्स वाली भी बात हुई है। अच्छा प्रदर्शन करते हुए पहला ही मैच जीतना, हालांकि कंपैरिजन गलत होगा, लेकिन पुरुष टीम की अगर बात करें, कई साल लग गए भारतीय पुरुष टीम को टेस्ट मैच जीतने में लॉर्ड्स में, और महिलाओं ने वो कर दिखाया कि हम इंग्लैंड जाएंगे और इंग्लैंड को हराएंगे।
1: राजा, वनडे विश्व कप जीतने और लॉर्ड्स में ऐतिहासिक टेस्ट जीत के बाद महिला टीम की सोच और अप्रोच में कितना बदलाव आया है और कितना बदलाव आना चाहिए?
0: मुझे लगता है कि भारतीय महिला टीम में सोच और अप्रोच दोनों सही थे, लेकिन अब विश्वास बढ़ जाएगा कि हम दूसरे देश के मैदान में, वो भी सर्वश्रेष्ठ मैदानों में से माना जाता है, इट इज नोन एज द होलीएस्ट ऑफ क्रिकेट ग्राउंड, वहां पे जाके जीतना पहले ही मैच में, टीम का हौसला बुलंद हो जाता है। पहले से बुलंद है, विश्व चैंपियन रही है भारतीय टीम, लेकिन इंग्लैंड में जाकर जीतना हम सबके लिए कहीं ना कहीं एक स्पेशल मीनिंग आ जाता है कि ब्रिटेन में जाके इंग्लैंड को हराना, देयर इज अ स्पेशलिटी टू इट। और मुझे लगता है कि महिला टीम ये कर दिखाई है, और फिर उनके अंदर जो हौसला अफजाई चाहिए था उन्हें, खुद उन्होंने ढूंढ के निकाला है और फिर सबको दे भी दिया है।
1: और मयंक जी, प्रधानमंत्री जी ने खेल के मैदान पर नारी शक्ति का भी अपनी बातों में जिक्र किया, ये स्वाभाविक भी है क्योंकि नारी शक्ति की वजह से ही हम ग्लासगो में 13 गोल्ड मेडल जीत कर मेडल टैली में चौथे स्थान पर पहुंच सके, और उसमें 8 गोल्ड मेडल महिलाओं के थे। यानी हम कह सकते हैं कि हम खेल महाशक्ति बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और में हमारी नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है।
2: ये बात न सिर्फ मौजूद है, रेलेवेंट है, बल्कि ये बात बहुत एक तरह से कह लें कि ये टैक्ट फुलनेस की भी बात है, ये एक रणनीति की भी बात है। मैं ऐसा ही एक बार अध्ययन कर रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, जो कि ओलंपिक खेलों में पहले दूसरे उस पर रहते हैं, इनका क्या है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इनके स्वर्ण पदकों का, और मैंने पाया कि इनके अधिकतर जो पदक हैं वो महिला खिलाड़ी जीत रही हैं। और कुछ ऐसा अभी भी पूरे विश्व में जो वातावरण है, खेल परिदृश्य जो है, मैं समझता हूं कि भारतीय महिला खिलाड़ियों का जो अभी पूरी क्षमता का निर्माण नहीं हुआ है, अब ऑब्वियसली उसमें लग गए हैं, और इसमें बहुत स्कोप है। हमने यदि महिला खिलाड़ियों को सशक्त कर दिया और उनको अच्छी ट्रेनिंग दे दी, तो निश्चित रूप से हमारा वो जो लक्ष्य है कि हम 2036 तक पहले 10 खेल महाशक्ति होंगे, वो बिल्कुल संभव है। और आपने जो उदाहरण दिया, निश्चित रूप से वो एक फैक्ट तो है ही है कि 13 में से 8 मेडल जो है वो महिला खिलाड़ियों ने जीते हैं। आप अगर विश्लेषण कीजिए पिछले कुछ सालों में रेसलिंग में, जो कि हमारी वैसे भी ताकत रही है, और हमारा पहला जो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल ओलंपिक में वो भी रेसलिंग में मिला था, पुरुष खिलाड़ी ने दिया था, पर अगर आप अभी आप देखें तो महिला रेसलर्स जो हैं उनके अंदर ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं, महिला बॉक्सर्स उनके अंदर ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं। सबसे बड़ा सुखद क्षण मुझे लगा इस कॉमनवेल्थ में वो जूडो में खिलाड़ियों का आगे आना। जूडो एक ऐसा खेल है कि जिसमें हम लोग संभवतः पहली बार ऐसे मेडल जीते हैं, और उसमें भी महिला खिलाड़ियों का ही प्रमुखता रही है, और ये बहुत ही अच्छा एक सुखद संकेत है आगे आने वाले समय के लिए। तो निश्चित रूप से मैं बिल्कुल सहमत हूं, और ये मेरा मानना है कि महिला खिलाड़ी न सिर्फ अभी योगदान दे रही हैं, बल्कि आगे भी हमारे खेल परिदृश्य में बहुत अच्छा योगदान करने वाली हैं।
1: और राजा, खेलों को आम जन से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी छोटी जगहों और छोटी घटनाओं का भी जिक्र करते रहते हैं, जैसा कि उन्होंने केरलम के एर्नाकुलम के एक स्कूल के संस्कृत शिक्षक की फुटबॉल पहल का जिक्र किया। प्रधानमंत्री जी के ये प्रेरक उदाहरण आम लोगों के मन में खेलों के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए कितने अहम होते हैं?
0: बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि कुछ ऐसे अध्यापक हैं जो खेल की ओर ध्यान देते हैं। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना है 2020 का, और जो अभी स्पोर्ट्स का पॉलिसी बना है, इसमें खेल और पढ़ाई दोनों को मिलाने का, मिश्रण बनाने का एक प्लान है। तब जाके भारत का खेल आगे बढ़ेगा। और उनका ध्यान देखिए एक अध्यापक पे गई है, जहाँ पे वो संस्कृत को यूज करते हुए खिलाड़ियों को फुटबॉल खेलने में प्रोत्साहित करती है। हालांकि केरला में फुटबॉल के लिए कमी नहीं होती है, बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है। लेकिन एक और महिला है जो साड़ी पहनकर कोचिंग करती है। फुटबॉल की ही बात करें अगर, हालांकि कईयों को पता नहीं है ये, अगर हम विश्व में रैंकिंग की बात करें, हमारे महिला टीम, फुटबॉल की टीम की बात कर रहा हूं मैं, उनका बहुत बेहतर रैंकिंग है व्हेन कंपेयर टू मेन। और हम हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं इस बात को, बहुत बेहतरीन प्लेयर्स आए हैं। और जाहिर सी बात है कि एक अध्यापक अगर संस्कृत को लेके खिलाड़ियों को संस्कृत और खेल दोनों को मिला के एक अच्छा मैसेज, और ये बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंची है और ही हैज ओनली एलैबोरेटेड इट, और ये अच्छी बात है। और भी अध्यापक में एक जोश और ऊर्जा पैदा हो जाएगा कि हम भी कुछ ऐसा करें ताकि उनकी नजर हम पे भी पड़े।
1: जी, सवालों और जवाबों का ये सिलसिला तो जारी रहेगा, फिलहाल बारी है एक और गीत की। मयंक जी, अपनी पसंद का एक और गीत बताइए।
2: इस बार थोड़ा सा नया गीत बताता हूँ। दिल समझ जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू।

0: और इस गीत के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी की बात पर लौटते हैं, जो देश में खेलों के विकास और भारत को खेल महाशक्ति बनाने के लिए बेहद गंभीर हैं। इसी का नतीजा है कि अहमदाबाद में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होने जा रहा है, साथ ही 2036 में हमारी ओलंपिक मेजबानी की भी योजना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ संशोधित खेलो इंडिया योजना को मंजूरी दी है। मैंग जी, इस संशोधित खेलो इंडिया योजना का प्राइमरी लॉन्ग टर्म गोल क्या है और जो पैसों का आवंटन है वो किस तरह से किया गया है?
1: संभवतः हमारी किसी बात में ये जिक्र आया था कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, जो भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि 2036 तक हम खेलों में प्रथम 10 स्थानों पर रहने वाले देश बन सके, 2047 तक हम प्रथम 5 देशों में से एक हों, ऐसा एक बृहद लक्ष्य है। अब उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जैसा मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा खेलो इंडिया जो योजना है उसके बारे में बताया था कि कैसे वो 720 डिग्री सपोर्ट देती है और 360 डिग्री सपोर्ट के आगे वो कोच की भी बात करती है, स्पोर्ट्स साइंस की भी बात करती है, आईटी सपोर्ट की भी बात करती है, हर जिले में और स्कूलों में डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल की बात करती है, इसके अलावा जो राज्य के साथ भागीदारी में अधोसंरचना की बात करती है जिसमें केंद्र सरकार 60% योगदान देगी और राज्य सरकारें 40% और नॉर्थ ईस्ट में 90% तक का योगदान भारत सरकार देगी। इसी प्रकार से एक ट्रेनिंग इकोसिस्टम खड़ा किया गया जिसमें साई के जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अंग है, एनसीओई, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, साई ट्रेनिंग सेंटर्स, इन सब का भी एक पूरा एक वो चलेगा। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं पहले बात किया था KISC OKIC वो तो रहेंगी, तो एक पूरा एक अधोसंरचना, पूरा एक सपोर्ट सिस्टम हर क्षेत्र में इसमें आ गया। जहां तक पैसों के आवंटन का प्रश्न आपने किया है, तो पैसों का आवंटन अभी इसको बोल सकते हैं कि अभी फ्लूइड है और आवश्यकता अनुसार इसमें किया जाएगा, जो एक तरह से कह लें कि एलोकेशन इसमें आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। निश्चित रूप से जो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी एलिमेंट है उनमें चूंकि उसका संगठन ऐसा होता है कि उसमें पैसा ज्यादा लगता है, तो निश्चित रूप से वहां पे ज्यादा पैसा लगेगा। लेकिन जो लक्ष्य है वो है ट्रेनिंग में खर्चा करने का, एथलीट के ऊपर खर्चा करने का और अकेडमिक या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बनाना है उसमें खर्चा करने का।
0: जी, तो राजारमन जी, खेलो इंडिया के नए स्वरूप के तहत खिलाड़ियों को मिलने वाले साइंटिफिक ट्रेनिंग में बदलाव की कितनी आवश्यकता है, जैसे कि चर्चा कर रहे थे कि ट्रेनिंग भी एक फोकस विषय है इस संशोधित खेलो इंडिया का।
2: धर्मेंद्र, जितना भी मैं खेला हूं और देखा हूं, करीब 50 साल तो हो गए होंगे इन सबको, स्पोर्ट्स साइंस का बहुत जरूरी होता है। अभी तक बहुत कम यूज हुआ है स्पोर्ट्स साइंस, हम सिर्फ एलीट लेवल पे यूज करते आए हैं स्पोर्ट्स साइंस को। मयंक जी ने कोचिंग की बात की, कोचेस हमारे पास कम है जो विश्व स्तर का कोचिंग कर सके, जो स्टैंडर्ड कोचिंग करें, ताकि जो खिलाड़ी मैदान में सीखता है, बेसिक्स जहां पे उसके पढ़ते हैं, फंडामेंटल जहां पे आते हैं, अगर वहां से उठना है तो वो फंडामेंटल सही पढ़े। फाउंडेशन अगर सही गिरता है, नींव अगर सही पड़ता है, तो आगे चल के वो स्टार बन सकता है। धर्मेंद्र, आप भी सुन चुके होंगे, मैं भी सुनता हूँ, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कोचेस आते हैं वो कहते हैं कि आपका टेक्निक ही गलत है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिखाना पड़ता है कि टेक्निक कैसे सुधारा जाए। अगर हम इस पे फोकस करते हैं, और अब फोकस आ रहा है, कोचिंग और स्पोर्ट्स साइंस दोनों में फोकस आ रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो खेलो इंडिया के ट्रेनिंग फैसिलिटीज होंगे हर जिले में होगा और हर स्कूल में शायद एक अच्छा सा कोच होगा जो स्पोर्ट्स साइंस को समझ सके। जब तक आप इसको जोड़ नहीं लेते हैं, आपके खिलाड़ियों को भी समझ नहीं आता है। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से झिझकते हैं, कि वो कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास हम क्यों जाएं, हमें कोई मनोवैज्ञानिक बीमारी तो नहीं है। ये सब बदल रहा है और ये नया देश देखने को मिल रहा है, हमारे खिलाड़ी फियरलेस होते जा रहे हैं, उनके अंदर जो डर था वो दूर हो रहा है और वो चाहते हैं कि दुनिया को जाके कॉन्कर कर कर आए और फिर अपने घर में राज करें। दे आर सेलिब्रेटेड और हम क्यों ना पूजे उनको। वो ऐसे इंसान है जो विदेश में भी हमारे झंडा को लहरा के आते हैं। बहुत कम लोग कर सकते हैं ये काम और खिलाड़ी ही करते हैं, लगातार करते हैं। क्या कहूं, राष्ट्रगान जब बजता है विद द फ्लैग गोइंग अप, चाहे वो ओलंपिक्स हो या एशियन गेम्स हो, रोंगटे खड़े होते हैं और ये खिलाड़ी

0: ही कर सकता है। अगर 20 मेडल चाहिए, 30 मेडल चाहिए, हमें चाहिए कि ग्रास रूट में स्पोर्ट्स साइंस लाए। और ये खेलो इंडिया मिशन का एक बहुत अच्छा फोकस है कि कोचिंग भी सही हो और फिर स्पोर्ट्स साइंस भी सही हो।
1: मैन जी, इस संशोधित योजना में प्रतिभाशाली एथलीटों को मिलने वाली स्कॉलरशिप और वित्तीय सहायता के लिए क्या कुछ नए नियम बनाए गए?
2: जहां तक नियमों का सवाल है, नियम तो लगभग वही रहेंगे। नियमों से परे जो चीज हुई है, जो क्रांति इसमें हुई है, पहले हम मात्र 3,000 खिलाड़ियों को खेलो इंडिया एथलीट बनाते थे और उनको आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस और जहाँ पे वो लोग प्रैक्टिस करते हैं उन संस्थानों को वित्तीय सहायता देते थे। अब ये संख्या बढ़ के 30,000 हो जाएगी। 30,000 लोगों को वित्तीय सहायता मिलेगी, आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस मिलेगा। वो जिन संस्थानों में अभ्यास करते हैं उन संस्थानों को इन खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में और अनुकूल सहायता देने के लिए वो जो वित्तीय सहायता थी वो मिला करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। 8 गुना वृद्धि हुई है टोटल फाइनेंशियल एलोकेशन में और 10 गुना वृद्धि हुई है प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के बकेट में। 10 गुना अधिक खिलाड़ियों को डायरेक्ट सपोर्ट हम बोल सकते हैं कि मिला करेगा।
1: स्पॉन्सरशिप बड़ी समस्या हुआ करती थी, लेकिन जैसा कि मयंक जी ने बताया कि जो स्कॉलरशिप है उसके लिए खिलाड़ियों की संख्या बढ़ा दी गई है, इसका कितना पॉजिटिव असर खेलों पर खिलाड़ियों पर पड़ेगा?
0: बहुत ज्यादा पड़ेगा और एक विश्वास बढ़ जाएगा खिलाड़ी के अंदर। और जो हमेशा डाउट रहता है कि अगर मुझे चोट लग गया, मैं बीमार हो गया या खेल से बाहर हो गया तो मेरा क्या होगा, इस सवाल का जवाब अब शायद मिलने लगा है खिलाड़ी को। वो निडर होके खेलने लगे हैं धर्मेंद्र। और मुझे लगता है कि जो खेलो इंडिया का स्कॉलरशिप स्कीम है, अगर 3,000 से बढ़कर 30,000 खिलाड़ी तक जा रहा है
1: जी,
0: तो आपका जो बेस है वो और ब्रॉड होता जा रहा है। मुझे लगता है कि क्रीम और बेहतर होगा आगे चल के। 2036 की ओर ध्यान है, आज शुरू करना चाहिए और शुरू हो गया है। अच्छे नतीजे आएंगे, वी विल सी वेरी गुड रिजल्ट। और मेरा ये मानना है कि हर वो एंगल कवर्ड है, पॉजिटिविटी भरा हुआ है देश के अंदर और खिलाड़ियों के अंदर और भी ज्यादा हुआ है। मेरा ये मानना है कि अगर उसको सही दिशा दे, सही चैनलाइज करे, तो हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खेल के देशों में हम एक जरूर बन सकते हैं।
1: और मयंक जी, कॉमनवेल्थ गेम्स में तो हमने खेलो इंडिया स्कीम से निकले खिलाड़ियों का जलवा देखा, ढेर सारे मेडल खेलो इंडिया के खिलाड़ियों की तरफ से आए। जो प्रदर्शन रहा है अद्भुत रहा है, क्या कहेंगे?
2: बिल्कुल, वो जो आपने शुरू में एक स्लोगन कहा था, मैदान से पोडियम तक का माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो दिया गया था आपने उसे दोहराया, तो ये खेलो इंडिया इस कॉमनवेल्थ गेम में आप बिल्कुल उसको फलीभूत होते हुए देख पाएंगे। 122 खिलाड़ी थे, उनमें से 70 खिलाड़ी खेलो इंडिया से किसी न किसी रूप में संबद्ध रहे हैं। और जो मेडल विनर्स थे, 39 मेडल्स हमारे आए, 39 मेडल्स में से 16 मेडल्स, 16 पदक
1: जी,
2: वो खेलो इंडिया से संबद्ध खिलाड़ियों के
1: जी।
2: तो आप देख सकते हैं कि वो जो मैदान से पोडियम तक, यहाँ पे एकदम साकार हो रहा है, एकदम फलीभूत हो रहा है
1: जी। और राजा, कहते हैं कि खेल प्रतिभाएं वो गांवों में भी बहुत छुपी हुई हैं और उनके पहचान की आवश्यकता है। वहां से बहुत सारे ऐसे एथलीट, ऐसे खिलाड़ी निकलकर सामने भी आते हैं जिन्होंने देश के लिए ढेर सारे मेडल जीते हैं। अभी इस दिशा में खेलो इंडिया के तहत और कितना काम करने की आवश्यकता है?
0: धर्मेंद्र, मेरा यह मानना है कि भारत के जो मेडल्स अभी तक आए हैं वो हिंटरलैंड से ही आए हैं। ज्यादातर आप खेलों में देखें तो वो खिलाड़ी रूरल एरिया से है, बैकवर्ड एरिया से है, उनके अंदर एक भूख है जो शायद शहरी खिलाड़ियों में कम है। मैं नहीं कह रहा कि शहरी खिलाड़ी कम है, किसी स्तर पे भी कम है, लेकिन भूख उनके अंदर ज्यादा दिखता है। और इनको खोजने में जो खेलो इंडिया का टैलेंट आइडेंटिफिकेशन स्कीम है, ये अभी मदद करेगा। मेरा ये मानना है कि खेलो इंडिया के जो अधिकारी है उनको समझ आया होगा, 2 साल पहले उन्होंने एक स्कीम चलाया था, उसमें से सीख मिली होगी। कीर्ति स्कीम था, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन स्कीम, उसमें से कुछ सीख मिला होगा। और आगे जो करना है हमें टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में, इसमें सुधार लाकर अच्छे टैलेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। जो 30,000 खिलाड़ियों की बात हो रही है खेलो इंडिया स्कॉलर्स की, ये हमारा भविष्य होंगे। और मेरा ये मानना है कि ये सारे अच्छे खिलाड़ी होंगे और बेहतरीन रिजल्ट्स भारत के लिए लेकर आएंगे आगे चलकर। ये कोई भी देश में ये होता है धर्मेंद्र, के आज अगर आपके पास 30,000 खिलाड़ी हैं, वो सारे 30,000 वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेंगे, उनमें से छांट कर आपको 30 वर्ल्ड क्लास एथलीट मिलेंगे। अगर आपके पास बेस 3000 का ही है तो 3 खिलाड़ी आपको मिलते हैं। अच्छी बात है कि बेस हम बढ़ा रहे हैं और वहां से हमारे खिलाड़ी उभर कर आएंगे और विश्व स्तर पर अच्छे चैंपियंस बनेंगे और फिर गर्व से हमारा दिल धड़कने लगेगा।
1: और मैन जी, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स जो है देश में, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है,

0: कि क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स अभी तक आए हैं और भविष्य में क्या योजनाएं हैं।
1: टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो है भारत सरकार ने इस उद्देश्य से शुरू की थी कि जो हमारे एलीट एथलीट हैं, एलीट एथलीट का आशय उन एथलीट से है जिनको कि हम ये मान करके चलते हैं कि इनके अंदर इतनी प्रतिभा है और उनकी स्किल लेवल इतनी अच्छी है कि ओलंपिक और एशियन गेम्स इस तरह के जो टॉप नॉच जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें ये भारत को पदक दिलाने में सक्षम है, तो उनको इस तरह की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े, कोई फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल न फेस करना पड़े, कोई अन्य गतिरोध न फेस करना पड़े, ट्रेनिंग का हो, चाहे जगह का हो ट्रेनिंग के लिए, चाहे ट्रेनिंग के लिए सामानों का हो, या जो रिकवरी का हिस्सा है ना, मतलब उनके जो मैसर्स होते हैं, उनके जो फिजियो होते हैं, इन सभी की दृष्टि से उनको कोई ऑब्स्टिकल का सामना न करना पड़े और कोई उनके पास कमी न रह जाए, इसलिए टॉप्स जो है स्कीम लाई गई थी। और इसमें ऐसे एथलीटों का चयन किया जाता है, एक समिति होती है जो साई में कार्य करती है, उस समिति में रिनाउंड प्लेयर्स हैं, रिनाउंड कोचेस हैं, हमारे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के भी रिनाउंड जो पुराने लोग हैं वो लोग हैं, और ऑफकोर्स अधिकारी ही हैं, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सीईओ टॉप्स एक अधिकारी है जो कि वर्तमान में कर्नल जोहल हैं, जो स्वयं भी ओलंपियन रह चुके हैं। तो ये अधिकारी जो है उनके अधीन ये समिति उनका निर्धारण करती है, उनके पैमाना बना होता है कि किस प्रकार के लोग इसमें टॉप स्कोर एथलीट बनेंगे। टॉप स्कोर एथलीट को ज्यादा स्कॉलरशिप बोल लें, अलाउंस बोल लें, वो मिलता है, एक टॉप्स डेवलपमेंट है जिनको हम दूसरी रंग मान सकते हैं कि ये कोर से तुरंत ही कोर बन सकते हैं, इनके अंदर भी मेडल क्षमताएं हैं, तो उनको थोड़ा सा कम पैसा मिलता है। और जो बाकी सुविधाएं जैसे मैंने आपको बताया, जितनी चीजें स्पोर्ट्स साइंस हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे उनकी रिकवरी के हिस्से हो, चाहे उनके स्पोर्ट्स का सामान हो, इत्यादि इत्यादि। उदाहरण के लिए नीरज चोपड़ा जैसे, तो साउथ अफ्रीका में जो उनकी ट्रेनिंग थी उसकी फंडिंग टॉप्स के द्वारा ही की गई थी। तो इस प्रकार से एलीट एथलीट को सहायता देने का एक प्रयास टॉप्स के माध्यम से होता है, और आप देख रहे होंगे कि एलीट एथलीट के हिसाब की ही चीजें उनको प्रदाय की जा रही है। जैसे नीरज चोपड़ा ने कहा था साउथ अफ्रीका में वो प्रैक्टिस कर सके, तो वो सुविधा उनको टॉप्स के माध्यम से प्रदान की गई थी।
2: मयंक जी ने नीरज चोपड़ा की बात की, मैं मीराबाई चानू की बात करूंगा आपसे। मीराबाई चानू को चोट लग गया था, बैक में प्रॉब्लम था, मैं 2021 ओलंपिक गेम जो 20 में होने थे लेकिन 21 में हुआ है उस गेम की बात कर रहा हूँ। मीराबाई चानू को वहां पे मेडल मिला था, हम सब जानते हैं, लेकिन 3 महीने पहले मीराबाई चानू को चोट लगी थी और डाउट्स हो गए थे कि इनका क्या होगा। टॉप्स के सपोर्ट से वो गई अमेरिका, सेंट लुइस, वहां पे स्कॉट यूनिवर्सिटी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोफेसर है जिन्होंने उनका इलाज किया और उनका स्क्वाट लिफ्टिंग भी इम्प्रूव कर दिया और तब जाके ओलंपिक में मेडल मिला है। कई सारी बातें टॉप्स की जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है इसकी हमारे सामने आती नहीं है, लेकिन जरूरी है कि जब खिलाड़ी को मदद की जरूरत पड़ती है, जैसे मीराबाई चानू को ऐन वक्त पे पड़ गई थी और किसी का भी क्लियरेंस का टाइम नहीं वेस्ट हुआ है। एक टाइम था जब मीराबाई चानू चिट्ठी लिखती थी 3 महीने वेट करो, फिर उसके बाद क्लियरेंस हो ना हो पता नहीं, तब तक आपके पीठ का क्या हाल हो रहा है पता ही नहीं। लेकिन ये मेडल अगर किसी को जाता है, हालांकि मीराबाई चानू के हुनर को जाता है, उनके कोच को जाता है, लेकिन अगर कहीं क्रेडिट जाना पड़ेगा किसी को तो वो टॉप्स को जाता है।
0: और राजा, इतनी सारी बातें हमने कर ली, सुना आप गाना भी बहुत बढ़िया गाते हैं।
2: नहीं, गाता तो नहीं हूँ और मैं श्रोता को डराना नहीं चाहता हूँ धर्मेंद्र, लेकिन खेल का जो मुहिम है, 1958 में एक ऐसा खिलाड़ी भारत के अंदर एक जोश पैदा कर दी, मैं मिल्खा सिंह की बात कर रहा हूँ। आज की तारीख में जितना उनका तारीफ की जाए कम, वो फौजी रहे, बड़े मुश्किल परिस्थिति से उभर कर आए और फिर चल के कॉमनवेल्थ का मेडल जीता उन्होंने, क्योंकि हम कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं, रोम ओलंपिक्स में 4th प्लेस फिनिश किया उन्होंने। उनके एक बायोपिक बना था भाग मिल का भाग, उसमें एक बहुत बेहतरीन गाना है जो आज भी हम सबको प्रेरित करेगा, हम सबको दिखाएगा कि आप मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छे है।
0: जी, वो कौन सा गाना है जो सुनना चाहते हैं?
2: भाग मिल का भाग।

0: तो ये गीत भी हमने सुन लिया। सच कहें तो नए भारत में खेलों के मैदान पर सफलता का सिलसिला जारी है और ये दौर लगातार मजबूती से आगे बढ़ रहा है। खेलों के मैदान से पोडियम तक पहुंचने के लिए नई बुनियाद खड़ी की जा रही है, कामयाबी की नई कहानी लिखी जा रही है। खेल को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए हमने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी बहुत सारे कदम आगे बढ़ाने हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच में परिवर्तन लाएं, अपने बच्चों को भी खेलों के लिए प्रोत्साहित करें और प्रेरित करें। मैदान मार रहे अपने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने में कोई कसर न छोड़ें, तभी मैदान से पोडियम तक पहुंचने का हमारा ये महाअभियान पूरा होगा। तो मयंक श्रीवास्तव जी, खेलों के क्षेत्र में भारत सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण की तरफ से किए जा रहे प्रयास के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू
0: जी। राजारमन जी, खेलों में भारत के वर्तमान और भविष्य पर इतनी अच्छी बातचीत के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू सो मच धर्मेंद्र।
0: तो अब कार्यक्रम के संयोजक प्रमोद कुमार वत्स और प्रस्तुतकर्ता शहनवाज खान के साथ मैं धर्मेंद्र मणि राजेश कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से आप सबसे लेता हूँ अनुमति। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, अपराह्न के 12 बज रहे हैं और अब सुनिए इस घंटे के हिंदी मुख्य समाचार। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की खरीदारी का सिलसिला अगस्त में लगातार दूसरे महीने जारी है। अगस्त के पहले पखवाड़े में FPI ने भारतीय शेयरों में 16,621 करोड़ का निवेश किया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार भारत की अपेक्षाकृत आकर्षक मूल्यांकन, कंपनियों के मजबूत नतीजों, अमेरिका में संभावित ब्याज दर कटौती, कच्चे तेल की नरम कीमतों और रुपए में कम उतार चढ़ावों ने विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में 80 लोगों को मुंबई पुलिस ने उनका चोरी हुआ या गुम हुआ सामान वापस लौटाया, जिसकी कीमत करीब 1,15,00,000 रुपए है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार ये कार्यक्रम वेस्ट जोन में 2 में आयोजित किया गया, जिसमें बांद्रा, खार, सांता क्रूज, जुहू और DN नगर थानों की जांच के दौरान बरामद की गई संपत्ति को आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा गया। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान आयातित रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित होने के बाद अब

सरकार ने घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के लिए पहली बार अलग अलग रिफाइनरी इकाइयों और तेल गैस कंपनियों के लिए अधिकतम उत्पादन लक्ष्य तय किए हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 13 अगस्त के आदेश के तहत 21 रिफाइनरी और अपस्ट्रीम कंपनियों के लिए कुल 63,810 टन प्रतिदिन का तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी उत्पादन क्षमता निर्धारित की है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित प्राचीन बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की सालाना श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा 2026 कल से शुरू होकर इस महीने की 28 तारीख तक चलेगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना होगा। अधिकारियों ने पुंछ, रजौरी और आने जाने वाले रास्तों पर कड़ी सुरक्षा और निगरानी लागू की है। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। आप सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो मुंबई।

12:03 का वक्त और ये वक्त FM रेनबो 107.1 पर म्यूजिक कैफे का होता है और आप लुत्फ उठाना शुरू कर चुके हैं अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ म्यूजिक कैफे में। आज लेकर आया हूं एक मोहब्बत की दास्तान जो एक म्यूजिकल सफर तय करेगी हमारे और आपके दरमियान। तो कहीं मजाइए, सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो मुंबई।

12:08 का वक्त और आप लुत्फंदोज हो रहे हैं, यानी कि लुत्फ उठाना शुरू कर चुके हैं अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ 107.1 एफएम रेनबो मुंबई पर, और प्रोग्राम है म्यूजिक कैफे। आज आप सुनेंगे एक मोहब्बत की दास्तां, दिवाकर और रोशनी के दरमियान जो घटित होती है, बीतती है। तो दास्तां कुछ यूं शुरू होती है कि दिवाकर और रोशनी दोनों समंदर की तरफ मुकर के खड़े थे, जैसे मानो अभी एक नर्म नोकझोंक से गुजरे हों। उनके बीच ऐसा ही था, जब भी कोई नोकझोंक होती तो दोनों कुछ देर खामोश हो जाते, फिर कभी दिवाकर पहल करता तो कभी रोशनी कोशिश करती कि सब ठीक हो जाए। हालांकि उनके बीच इतना भी कुछ खराब ना हुआ रहता, लेकिन ये जो कुछ पल का सन्नाटा था जो उनके दरमियान आया था, उससे उन दोनों को ही नफरत थी। दिवाकर अपने पीछे खड़ी है, उसी दिशा में देख रही है, रोशनी को देखते हुए मुड़ता है। रोशनी हाथ बांधे दूसरी तरफ देखने का नाटक करती है, फिर दिवाकर के जाने अपनी नजरें फेरते हुए देखती है। दिवाकर समंदर की तरफ मुड़ता है, रोशनी उसकी तरफ मुड़ती है, और दिवाकर समझ जाता है कि पहल वहां से होने वाली है, और रोशनी उसी तरफ आसमान में देखते देखते अहमद फराज साहब का एक शेर बोलना शुरू करती है। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। दिवाकर को, या कहें दिवाकर के दिल को मिली ठंडक, और उस सुकून के एहसास को दिवाकर महसूस करता है, और उसी तरफ देखकर, आसमान की तरफ देखते हुए गजल का दूसरा शेर पढ़ता है और अपनी बात कहता है। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। म्यूजिक एफएम लुत्फंदोज हो रहे हैं अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ। ये दास्तां आगे भी बढ़ती रहेगी, फिलहाल

रोशनी ने जो शेर अर्ज किया उससे दिवाकर को मिली ठंडक और उस सुकून के एहसास से दिवाकर ने उसी गजल के उस शेर से उसका अंजाम और उसका जवाब दिया। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। यशो शेर बोलकर रोशनी की तरफ दिवाकर मुड़ता है और उसे अपने करीब बुलाने के अंदाज में हाथ फैलाता है। रोशनी चेहरे पर मीठी मुस्कान लिए और दिल में बेपनाह मोहब्बत लिए दिवाकर की तरफ भागती है और उसकी बाहों में समा जाती है। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे के समीप होने के एहसास को महसूस करते हैं, फिर दिवाकर बोलना शुरू करता है। जब तुम्हें पता है कि हमारे बीच ये तकरार ज्यादा देर टिक नहीं सकती और ये भी पता है कि मेरे लॉजिक्स के सामने तुम्हें हारना ही है, तो ये घाटे का सौदा, ये खसारा, ये जिया करती ही क्यों हो कि तुम्हें नाराजगी जाहिर करके भी खुद ही मान जाना पड़े। रोशनी के पास जवाब तो बहुत से थे, पर वो इस मोमेंट और मोहब्बत के एहसास को जीना चाहती थी, तो उसने बस परवीन शाकिर का एक शेर पढ़ा। जीतने में भी जहां जी का जिया पहले से है, जिया यानी घाटा और खसारा माने भी घाटा, एक लफ्ज आएगा। जीतने में भी जहां जी का जिया पहले से है, ऐसी बाजी हारने में क्या खसारा देखना। रोशनी की आवाज सुनते ही दिवाकर से कुछ बोला ना गया, उसने भी

अपना जवाब इसी गजल के दूसरे शेर में तलाश लिया। आईने की आंख ही कुछ कम न थी मेरे लिए, आईने की आंख ही कुछ कम न थी मेरे लिए, जाने अब क्या क्या दिखाएगा तुम्हारा देखना।

म्यूजिक एफएम में लुत्फ अंदोज हो रहे हैं आप अपने दिल की आवाज आदित के साथ। ट्यून किया हुआ आपने 107.1 एफएम रेनबो मुंबई और म्यूजिक एफएम में आप सुन रहे हैं मोहब्बत की दास्तां दिवाकर और रोशनी के दरमियान की। तो दिवाकर ने जब रोशनी से दरियाफ्त किया, जानना चाहा कि ऐसी नाराजगी किस काम की जब खुद ही मान जाना पड़े, तो रोशनी के पास जवाब बहुत सारे थे, लेकिन उसने शेर में जवाब दिया कि जीतने में भी जान जी का जिया पहले से है, ऐसी बाजी हारने में क्या खसारा देखना। रोशनी की बात सुनकर फिर दिवाकर से कुछ बोला ना गया और उसने भी उसी गजल के शेर में जवाब दिया और फिर कहा कि आईने की आंख ही कुछ कम न थी मेरे लिए, जाने अब क्या क्या दिखाएगा तुम्हारा देखना। आगे की दास्तां कुछ यूं है कि रोशनी ने मुस्कुराते हुए फिर दिवाकर को सीने से लगा लिया। उनके बीच का रिश्ता ही कुछ ऐसा था, बेपनाह मोहब्बत के एहसास अक्सर गजल के माध्यम से बयां होते। इसी बीच रोशनी को बीते दिनों की एक बात याद आई। उसे लगा कि यही समय सही समय है उसे पूछने का, तो उसने पूछना शुरू किया। उस रोज जब तुम्हारा जाने का समय था, हम दोनों अलग हो रहे थे, तो एकदम से लौट कर क्यों आ गए थे तुम, और लौट कर आकर इतनी जोर से गले क्यों लगा लिया था। दिवाकर ने एक लंबी सांस छोड़ी और फिर बोलना शुरू किया, तुमने जिस अंदाज में पलट कर देखा उसके बाद तो मुझे आना ही आना था। और फिर ज्यादा कुछ कहा ना गया, फिर एक शेर में अपनी बात बयां कर दी। यूं बिछड़ना भी बहुत आसान था उससे मगर, यूं बिछड़ना भी बहुत आसान था उससे मगर, जाते जाते उसका वो मुड़कर दोबारा देखना, जब कोई जा रहा हो और मुड़कर दोबारा देख ले तो इसका मतलब कि अभी भी जाने की इच्छा नहीं है, ख्वाहिश है कि बस साथ बैठे और मिले और बात करें और उस लम्हे को जिए जिसमें कहें कि कोई मेरा अपना है यहां पर।

दिवाकर ने तो अपना जवाब एक शेर में दर्ज कर दिया था। यूं बिछड़ना भी बहुत आसान था उससे, मगर जाते जाते उसका वो मुड़कर दोबारा देखना। अब बारी दिवाकर की थी। उसके जहन में वो सवाल आया जिसका जवाब शायद वो जानता था, फिर भी उसने सवाल पूछने से गुरेज नहीं किया। कुछ ऐसे सवाल जो मोहब्बत की गहराई को ताजा करते हैं, उन्हें समय समय पर पूछते रहना चाहिए। तो दिवाकर ने भी मोहब्बत के उस एहसास की याद को ताजा कर लिया और पूछा, मैं उस रोज जब जाते जाते लौटा तो तुम्हें अपने आगोश में लिया और तुम्हारी आंखें क्यों भीग गई थी? रोशनी आखिर इस बात का क्या ही जवाब दे सकती थी। कुछ सवालों के जवाब शायद बने ही नहीं हैं। उन्हीं में से एक है कि हम रोए क्यों थे। अक्सर हम जिनके साथ या जिनके सामने रो लेते हैं, उनके सामने हम खुद को महफूज सुरक्षित महसूस करते हैं। जिन्हें हम अपना मानते हैं, उनके साथ या उनके सामने हम आसानी से रो लेते हैं। शायद यही उस नजदीकी को जाहिर करने का एक तरीका थी। रोशनी ने लंबी खामोशी के बाद दो शेर कह दिए। मेरी आंखों में तेरे प्यार का आंसू आए, मेरी आंखों में तेरे प्यार का आंसू आए, कोई खुशबू मैं लगाऊं तेरे खुशबू आए, उसने छूकर मुझे पत्थर से फिर इंसान किया, उसने छूकर मुझे पत्थर से फिर इंसान किया, मुद्दतों बाद मेरी आंखों में आंसू आए। हम हैं आदित्य आपके साथ, म्यूजिक कैफे सुन रहे हैं आप 101.1 FM रेनबो मुंबई पर। मुद्दतों बाद मेरी आंख में आंसू आए।

से गुजर रहे थे, आ रहे थे, फिर गुजर रहे थे। उसे बार बार याद आ रहा था, रोशनी का मोहब्बत से देखना, उसे गले लगा लेना, उसका बात बात पर उसके सामने रो देना, ये सब देखते देखते उसके मन में एक शेर भी बार बार आ रहा था। और वो रोशनी के चेहरे को सामने रखकर उसे देखते हुए मुस्कुराते हुए मन ही मन में वो शेर दोहराते हुए बोला, दिल में रखता है न पलकों पे बिठाता है मुझे, दिल में रखता है न पलकों पे बिठाता है मुझे, फिर भी एक शख्स में क्या क्या नजर आता है मुझे। फिलहाल ये दास्तां यहीं तक। अगर आपको ये दास्तां अच्छी लगी हो तो आप हमें व्हाट्सएप करके बताएं, और अगर आगे भी इसे सुनना चाहते हैं तो हम जरूर लेकर आएंगे। आप हमें बस बता दें कि आपको ये दास्तां कैसी लगी है। फिलहाल के लिए म्यूजिक कैफे से विदा। हिट एंड हॉट में आपके नगमों के साथ बहुत जल्दी मुलाकात होगी।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: म्यूजिकली योर्स 1:05 हो चुके हैं और हिट एंड हॉट में लुत्फंदोज होने शुरू हो चुके हैं आप अपने दिल की आवाज़ आदित्य के साथ। और हिट एंड हॉट में बातें कुछ आपकी, नगमे कुछ आपके, और उन्हें अंजाम तक हम पहुंचाएंगे, आप तक भेजेंगे हम। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ बहुत सारी मोहब्बतों के साथ जुड़ चुके हैं, हमारे पास आएंगे, उन पर भी बात करेंगे। और फिलहाल तो जो लोग हमें अभी तक बस सुन ही रहे हैं और मैसेज भेजने की कश्मकश में हैं कि भेजें या ना भेजें, सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा, पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा, गाना प्ले हो सकेगा या नहीं, तो बस आप भेज दीजिए, ठीक है। और मैसेज कहाँ पर भेजना है, व्हाट्सएप पर भेजना है, नंबर सेव कर सकते हैं आप 8657661071, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो 4515-4132 और 33, ये दो हमारे नंबर्स हैं, इन पर कॉल कर सकते हैं आप। और काफ़ी सारे मैसेजेस हमारे पास हो गए हैं, अगर हम शुरू से शुरू करें या आखिर से शुरू करें तो प्रदीप अनंत कृष्णन साहब का मैसेज आ गया हमारे पास, संदीप कुमार जी, ज्योति घटोल जी, और एक नंबर से भी मैसेज है, नाम हम अंदर पढ़ के बताएंगे आपको। TDM नाम से भी हमारे पास एक मैसेज आया है, दीपा पालकर जी का मैसेज आया है, अभिजीत जी का मैसेज आ गया है, राकेश जी का मैसेज आ गया है, विजेंद्र जी का मैसेज आ गया है, दीपा

अली जी का मैसेज आ गया है, वैदेही जी का मैसेज तो हमारे पास बहुत पहले ही आ गया था और काफ़ी सारी बातें भी इन्होंने ऑब्जर्व करके लिखी हैं उस प्रोग्राम को सुनकर। और अमित भगत जी का मैसेज आ गया है हमारे पास, अजय साखरे जी की फरमाइश भी हमारे पास आ गई है, बहुत ही खूबसूरत से गीत की फरमाइश आपने भेजी है, उसे हम ज़रूर प्ले करने की कोशिश करेंगे। और फिरोज़ सिकंदपुरिया साहब का मैसेज आ गया है, प्रणव शिंदे जी का मैसेज आ गया है, प्रमोद चंचोलकर जी का मैसेज आ गया है, संदीप अजमेरे जी का मैसेज भी हमारे पास है, राजेंद्र परमार जी का मैसेज भी है, पंकज मोहन साहब, संजय दर्शन जी, विठल मुनगासे जी, आपके गाने से हम इस प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं, आपका मैसेज हमारे पास है और आप लिखते हैं। अच्छा, सिंपल सा आपने मैसेज लिखा है कि आप अहिल्या नगर से हमें मैसेज भेज रहे हैं और जिस गाने की फरमाइश की है उसको हम बगैर देरी बस आप तक पहुंचा देते हैं, सुनवा देते हैं। और आपसे ही दरख्वास्त करते हैं कि आप सुनते रहिए, बने रहिए हमारे साथ 107.1 FM रेनबो मुंबई पर, हम हैं आपके साथ, आपके दिल की आवाज़ आदित्य आपके साथ।

1:14 का वक्त, और वक्त तो बहुत तेजी के साथ गुजरता हुआ, और इसी के साथ हमारे पास कुछ फोन कॉल्स भी लगातार आ रहे हैं और कुछ मैसेजेस तो बहुत सारे, कुछ क्या बल्कि बहुत सारे आ चुके हैं, ऐसा बोलना चाहिए। और इसी सिलसिले में हमारे पास एक बेहद खूबसूरत से गाने की फरमाइश आई अजय साखरे जी की, उस गाने को सुनते हैं और उसके बाद आते हैं, तो फिर आपके मैसेजेस और आपकी बातें और आपके गाने उनकी तरफ चलते हैं।

1:19 का वक्त और हमारे पास एक फोन कॉल भी आया और कई सारे मैसेजेस भी आए विजेंद्र जी की। और विजेंद्र जी फरमाते हैं कि मनीषा कोइराला जी का जन्मदिन है आज के मौके पर, तो सबसे पहले तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और उन्हीं की फिल्म का कोई गाना सुनना चाहते हैं। और ऐसी ही फरमाइश हमारे पास ज्योति जी की भी आई, तो उन दोनों के ही गाने से हम आपको रूबरू करवाएंगे। और बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास और भी आ रहे हैं। ऐसा ही एक मैसेज हमारे पास हितेंद्र दास जी का आया और आप फरमाते हैं कि एनी सॉन्ग टू रीड आउट माय नेम प्लीज आरजे जी। जी हितेंद्र जी, देखिए मैंने आपका नाम पढ़ दिया, आप हमें असम से मैसेज कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज करने के लिए और इस प्रोग्राम को सुनने के लिए। और भी मैसेजेस हमारे इस फहरिस्त में शामिल होते हुए दिग्दर्शन और कविता जी का मैसेज आ गया है हमारे पास। और हमारे पास ये मैसेज किसका आया है, शेख मूसा मोहसिन जी का मैसेज आया है और साथ में नाम लिखा हुआ है अशोक वर्मा जी, राजकुमार बुड़ाना जी, आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है और आपने प्यार भरा आदाब कहा है जी, आपको भी बहुत बहुत आदाब। अब चलते हैं गाने की तरफ, रुख करते हैं तो विजेंद्र जी की फरमाइश का आपको एक ऐसा गाना जो एक एरा में ले जाएगा आपको, सुनते हैं और लुत्फ लेते हैं। आप ये मोहब्बतों भरा साथ क्यों ही बनाए रखिए, सुनते रहिए अपने दिल की आवाज़ आदित्य को और 107.1 FM रेनबो मुंबई को।

जी तो हमारे पास प्रणव शिंदे जी का मैसेज भी आ गया और आप हमें बताते हैं ऐसा कि सैफ अली खान जी का भी बर्थडे होता है आज के दिन, तो उनको भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने उनकी फिल्मों के बहुत सारे गाने भेजे हैं, और दूसरी बात कि आपने कई सारी बातें और अर्ज की हैं। दिल चाहता है कि आपकी हर तमन्ना पूरी हो जाए, जिंदगी की राहों में खुशियों की परंपरा बन जाए, हम साथ साथ हैं दुआ देने के लिए आज कि आपका हर दिन जवानी जाने मनसा हसीन हो जाए, जिंदगी हमेशा बना रहे, जिंदगी में हमेशा बना रहे आपका टशन, कामयाबी चूमती रहे आपके कदम हरदम, दुनिया दुआ है कि खुशियों का बाजार सजा रहे, कभी कम ना आपका। अच्छा ये पूरा आ नहीं रहा है मैसेज, पता नहीं क्यों। खैर आपने जन्मदिन की बधाई कुछ इस अंदाज में भेजी है, तो उनकी फिल्म के गाने की फरमाइश भी आपने की है, वो हमने क्यों कर लिया है। और इस गाने के बाद आप सुनेंगे समाचार, और समाचार के अंतराल के उस पार हम फिर से आपसे रूबरू होंगे।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: जी तो समाचार के अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है, खैर मकदम है और वेलकम है। बहुत सारे मैसेजेस और मेरा मुंह खुल ही नहीं पा रहा है। मैसेजेस की संख्या और मोहब्बतों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब ये ज़रूर होगा कि कुछ गाने ऑब्वियसली बात है कि प्ले नहीं हो सकते हैं, उसके लिए हम पहले से माफ़ी मांग लेते हैं, माजरत चाहते हैं और चलते हैं अगले गाने की तरफ। बातों में समय ज़ाया ना करते हुए हमारे पास आशु जी का मैसेज आया है और उन्हें एक फिल्म के गाने सुनने, एक विलन फिल्म के गाने सुनने हैं और उसमें से हमने एक गाना चुन लिया है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये गाना पसंद आएगा। और बहुत सारे हमारे पास ऐसे भी मैसेजेस आए जिसमें केवल हमसे ये कहा गया कि आपका नाम पढ़ दिया जाए। जैसे कि हमारे पास गुरमीत सिंह मीता जी का मैसेज आया, साउथ एक्सटेंशन दिल्ली से आप मैसेज कर रहे हैं और सबसे अच्छा आपका जो ये ग्रीटिंग है वो बहुत अच्छा लगा। आपने बोला खुशनुमा नमस्ते जी, वाह, आज से हम इस्तेमाल करेंगे ये खुशनुमा नमस्ते, खुशनुमा इवनिंग, ये बहुत अच्छा टर्म है इस्तेमाल करने के लिए। खैर तो चलते हैं गाने की तरफ और सुनवाते हैं आपको ये बेहद खूबसूरत सा गाना।

0: 1:48 का वक्त, और वक्त बहुत तेजी के साथ गुजरता हुआ और बहुत सारे लोग इस फहरिस्त में शामिल हैं कि उनका नंबर कब आएगा। इसी तरीके से राकेश माथुर जी का मैसेज हमारे पास आ गया है और उन्होंने ऐसा हमें लिखा है, और विदेही जी लिखती हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, शुक्रिया आपका भी जुड़ने के लिए और इतनी खूबसूरत बातें बताने के लिए। और हमारे पास अभिजीत जी का मैसेज आ गया है और कई सारे लोग आप साथ में संयुक्त रूप से मैसेज कर रहे हैं। अभिजीत जी, सरिता जी, सिद्धांत जी, एकांश जी और टुक टुक जी, आप सभी का मैसेज भेजने के लिए शुक्रिया। और आपके गाने को क्यों करने की कोशिश रहेगी अगर वक्त बचता है तो। फिलहाल तो हमने एक गाना क्यों करके रखा हुआ है, वो है हीरामणि जी की फरमाइश का गाना, बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। और हमारे पास कुछ और नाम जिनके मैसेजेस शामिल नहीं हो सके, और आज के रोज़ बहुत सारे मैसेजेस हमें ऐसे आए जो मनीषा कोइराला जी के जन्मदिवस पर बधाई देते हुए, उनको समर्पित करते हुए कुछ गाने चूज़ किया आप लोगों ने, तो कुछ गाने हमने प्ले करने की कोशिश भी की। और एक गाना जो बहुत ही अच्छा सा गाना आपको हम सुनवाने वाले हैं वो इस कमर्शियल ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे। और इसी बीच हमारे पास मुकेश कश्यप जी का मैसेज भी आ गया है, और तमाम सारे नाम आपने बोले हैं और आपने कहा है कि किसी भी गीत में आपका नाम शामिल कर लिया जाए, तो हम सिलसिलेवार ढंग से सारे नाम पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप लिखते हैं, नमस्कार जी आपको, जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से आप मैसेज करते हैं। मुकेश कश्यप जी, शीतल कश्यप जी, सोनू सुरेश जी, राजपाल जी, पंकज जी, काजल जी, सीमा जी, मनवी जी, तन्वी जी, मानवी जी, तन्वी जी और लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह जी, आप सभी का हार्दिक शुक्रिया मैसेज भेजने के लिए। और अब चलते हैं गाने की तरफ, हीरामणि जी की फरमाइश का गाना सुनवाते हैं आपको, लेकिन इस कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: ऐका ना, तुम्ही पीएम सूर्यगर मोफत बिजली योजने बद्दल ऐकलंय का?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: यामुळे तुमचं घर सूर्यघर बनतं, म्हणजे वीज बिल शून्य, आणि जास्तीची वीज तयार झाली तर ग्रिडला विकून पैसेही कमवू शकता। मग बसलात काय, आताच रजिस्टर करा pmsuryaghar.gov.in वर।

1:58 का वक्त और ये वक्त हमारा आपसे विदा लेने का है और आप तमाम सारे लोग जिनके मैसेजेस हम तक पहुंचे, जिनकी मोहब्बतें हम तक पहुंची, आपका दिल से शुक्रिया। फिर किसी रोज आपसे यूं ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और वनश्री आ रही है आपके लिए अगला प्रोग्राम लेकर, और ये खूबसूरत सा गाना इसी के साथ हम विदा लेते हैं। शुक्रिया आपका।

0: mixed doubles campaign. India is yet to win a world championship medal in the mixed doubles. Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
1: In cricket, Bangladesh secured a historic 9-wicket victory over Australia in the first test match of Murara Oval in Darwin, Australia today. It was Bangladesh's first test win on Australian soil and only its second victory over Australia. Mehdi Hasan Miraz was the first key performer in the match. He scored a crucial half century in Bangladesh's first innings and then took 5 wickets in the second innings as Australia were bowled out for 284. Cameron Green offered Australia hope with a 104 runs, his third test century and first in Australia. But Bangladesh's bowlers kept control and restricted the hosts to lead of just 56 runs. Bangladesh then chased the modest target in only 14.2 overs. The Directorate of Revenue Intelligence has dismantled a major network involved in importing Southeast Asian areca nuts into India by falsely declaring them as being of Bangladeshi origin and fraudulently availing concessional duty benefits under the South Asian Free Trade Area. And now before we end the bulletin, the headlines once again. NTA releases provisional answer keys for 84 subjects of UGC NET 2026. Objections window to remain open till Tuesday. Students protesting against JPSC JSSC exam irregularities in Jharkhand demand resignation of Chief Minister Hemant Soren. Union Home Minister Amit Shah unveils statue of Atal Bihari Vajpayee in Rajasthan as nation pays homage on former Prime Minister's death anniversary. Fresh low pressure over Northwest Bay of Bengal intensifies flood threat in northern Odisha. In badminton, India set to host BWF World Championships beginning tomorrow. And in cricket, Bangladesh secure historic first test win in Australia. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत, ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से दी मात। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: छात्र आधिकारिक यूजीसी नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं। प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने के लिए ₹200 प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। छात्रों को प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 18 तारीख है। एनटीए ने बताया कि शेष 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। एनटीए ने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर इन तीनों विषयों के संबंध में अलग से सार्वजनिक सूचना आज जारी की जाएगी। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित सूचनाओं पर ही भरोसा करें। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। श्री शाह ने ये बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही।
5: 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सब के बीच में से विदा लिए थे। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है।
2: श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना श्री वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुई थी। उनकी पहल के कारण जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई कार्य हुए, जिसे मौजूदा सरकार ने भी आगे बढ़ाया है और कई ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा की गई है। श्री शाह आज अलवर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
6: भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले चार क्षेत्रों की पहचान की है। में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के विरोध का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करके कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान तो किया ही, संविधान और देश की जनता का अपमान भी किया।
7: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
2: भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज हरियाणा में करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये अभियान इस महीने की 9 तारीख से

0: 17 तारीख तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने रवाना किया। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
1: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ओणम के औपचारिक समारोह आज अथम के साथ शुरू हो गए हैं और पूरे केरल में मनाए जा रहे हैं। अथम की खास पहचान अथपुक्कलम है, जिसमें घरों में रंग बिरंगे फूलों से कालीन सजाए जाते हैं। इसमें तिरुवोणम तक हर दिन फूलों की एक नई परत जुड़ी जाती है। मध्य केरल के त्रिपुनितुरा में आयोजित होने वाला भव्य अथाचमयम जुलूस भी ओणम समारोह का प्रमुख आकर्षण है। इसमें पारंपरिक कला रूपों और प्रस्तुतियों के माध्यम से राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलती है। उधर सबरीमाला मंदिर आज मासिक पूजा के लिए खोल दिया गया है। विशेष ओणम पूजा 24 से 28 अगस्त तक होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित प्राचीन बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। श्रावण माह में होने वाली यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृहमंत्री ए नमस्सिवयम ने कीझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल से शुरू हुआ पंजीकरण अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है।
3: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल उत्तरी ओडिशा तट पर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे राज्य में बाढ़ की समस्या और बढ़ गई है। IMD ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में खासकर कल और परसों बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बूढ़ा बलंग नदियों ने बड़े इलाकों को जलमग्न कर दिया है। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केंवुझर और केंद्रापड़ा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 500 से ज्यादा गाँव में लगभग 2,70,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 95,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारी हाई अलर्ट पर है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राजधानी दिल्ली में आज शाम हल्की वर्षा हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में ये चैंपियनशिप भारत में हुई थी। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व

0: चैंपियन पीवी सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक मिलने की उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो भारत की अगुवाई करेंगे। भारत ने अब तक विश्व चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स में कोई पदक नहीं जीता है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर दूसरी। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा।
1: महान संत श्री राम कृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक और माता काली के परम भक्त श्री राम कृष्ण परमहंस ने भारतीय सनातन परंपरा की गहन शक्ति और आध्यात्मिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

बिखावी कोड़ी न अरे वांगी न दौड़ का जोड़ी न काकड़ी बिखावी कोड़ी न गाजर नी मुड़ा दूधी दूध खुड़ा पाव

चाचा ठंडा हो। क्यों चाचा क्या हुआ? कोमड़ी आधी का अंडा हो। अंडा अंडा कोमड़ी पतला का चाचा ठंडा हो। कोमड़ी आधी का अंडा हो। उत्तर सांगा निकाय पण मांगा दाऊ न दाऊ माला डंडा हो। पतला का चाचा ठंडा हो। कोमड़ी आधी का अंडा हो। उत्तर सांगा निकाय पण मांगा दाऊ न दाऊ माला डंडा हो। दला मजे न राहू सारे हसबू या दुनियेला। दला मजे न राहू सारे हसबू।

0: चंदर या अरे एकदा खा तर पुन्हा पुन्हा याल। आइए बाबू जी आइए।
1: आवने बाबा आवने।
0: ओ साई ओ सदाजी येथे आ, भेद भावना ही।
2: ओ

0: Swanee FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: दोस्तों नमस्कार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर जो है म्यूजिकली योर्स। शाम के ठीक 5:03 हो रहे हैं और शुरू करेंगे कार्यक्रम लव यू जिंदगी। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त अमिता और मुझे पता है कि मैं बड़े दिनों बाद आपसे मिल रही हूं। वैसे मेरा तो हालचाल एकदम सब ठीक ठाक है, पर आप तो बताइए कि क्या कुछ हुआ है जीवन में। जीवन आप खुलकर जी रहे हैं या बस यूं ही जीवन काट रहे हैं? 8657661071 यह है आपके अपने एफएम रेनबो का व्हाट्सएप नंबर। मुझे इंतजार आपके जवाब का।

आई एम श्योर दोस्तों कि इस गाने के जैसे ही, इस गाने के जैसे बोल थे कि बस बाकी सब फर्स्ट क्लास है, तो जीवन भी आपका एकदम अच्छे से सिर्फ चल नहीं रहा होगा बल्कि खुशियों की पटरी पर दौड़ रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और आपके जो जवाब हैं, हमारे जो लिसनर्स हैं जिनके जवाब मुझ तक पहुँचे हैं, उनके जवाब से भी मुझे लग रहा है कि जीवन जो है बहुत ही अच्छा चल रहा है। दीपा पालकर लिखती हैं कि भाई लाइफ तो बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, हमारा जीवन ठीक ठाक चल रहा है। 2 महीने पहले गोवा की फैमिली टूर भी कर ली और अब अगर भगवान की कृपा रही तो फिर से कहीं वापस घूमने चले जाएंगे। बहुत बढ़िया है। वैसे भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा या उस कहते हैं ना उस परमेश्वर की कृपा हम सभी पर बनी रहती है, बस उस कृपा को पहचाने और जाने तो सच में जीवन बहुत बदल जाएगा। पंकज भोंड अमरावती से लिखते हैं कि भाई पहले कुछ दिनों से जिंदगी में परेशानी चल रही थी लेकिन वो भी खत्म हो जाएगी, जिंदगी फिलहाल ज्यादा खुल के नहीं जी पा रहा हूँ। पंकज जी, आपके जीवन में जो भी कोई परेशानी चल रही है उसका जल्द से जल्द आपको समाधान मिले, ऐसी हम सभी की ओर से आपके लिए प्रार्थना रहेगी। वहीं विजेंद्र खटोल लिखते हैं कि भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हम बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम कलंक फिल्म के इस गीत की तरह फर्स्ट क्लास हूँ। संजय दर्शन लिखते हैं कि समंदर के लहरों पर जब सुरों की बहार छाती है, मुंबई की हर शाम रेनबो के रंगों में नहा जाती है। हम वो श्रोता हैं जो सिर्फ आवाज नहीं जज्बात सुनते हैं, इस सप्तरंगी सफर में हम रोज नए ख्वाब बुनते हैं। भाई वाह, बहुत अच्छी पंक्तियां, बहुत ही अच्छी तुकबंदी और धन्यवाद, बहुत कुछ आपने अच्छा लिखा है। और राजेंद्र परमार लिखते हैं नमस्कार और स्वागत कर रहे हैं वो हमारा, भाई धन्यवाद। वहीं अरविंद कुलकर्णी लिखते हैं कि हम तो एकदम मस्त हैं, कल ही आज़ादी का जश्न

भी मना लिया बड़े जोर शोर से। और अजय साखरे इंदौर से लिखते हैं कि भाई हमारी तो रिटायर्ड जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही है और आगे भी अच्छी चलती रहेगी, बिल्कुल अच्छी चलती रहेगी। प्रकाश शिंदे लिखते हैं कि कल की फिक्र छोड़कर आज के इस हसीन पल को गले लगाना ही खुशनुमा जिंदगी का राज है। क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, तोड़ दे जो गुरूर एक पानी का, खुल के जी लो हर लम्हे को, यही तो मजा है इस बहती रवानी का। वैसे दोस्तों ये सारी तुकबंदियों को सुन मतलब पढ़ करके और ऐसा लग रहा है कि भाई रेनबो का जादू सभी लिसनर्स पर छा रहा है और हर कोई अब एकदम कवि बन रहा है। अब ये रेनबो का जादू है, ये मौसम का जादू है, ये तो आप ही बताएंगे। आप हैं अपनी आरजे दोस्त अमिता के साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम लव यू जिंदगी, और लव यू जिंदगी में आज हम करने वाले हैं बहुत सारी बातें और सुनने वाले हैं बहुत सारे गीत भी।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा

0: क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
3: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
2: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
3: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
2: सुनते रहिए 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
3: म्यूजिकली योर्स।

वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्म से मोहित चौहान और साथियों की आवाजों में ये गीत जिसे मैंने सुना बड़े दिनों बाद बस सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। दोस्तों 5:21 का वक्त सुन रहे हैं आप कार्यक्रम लव यू जिंदगी अपनी आर्ज दोस्त अमिता के साथ। दोस्तों कभी कभी जिंदगी हमें वो नहीं देती जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। किसी को घर नहीं मिलता, किसी को परिवार नहीं मिलता, तो कभी किसी को अपना कहने वाला कोई नहीं मिलता। लेकिन शायद जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच भी यही है कि जिसे प्यार की सबसे ज्यादा कमी होती है ना, वही कभी कभी दूसरों में प्यार बांटने वाला वो इंसान बन जाता है। अगर आपको याद हो तो एक बार लव यू जिंदगी कार्यक्रम में मैंने आपसे बात की थी बेबी मंकी पंच के बारे में। वो छोटा सा बेबी मंकी जिसके जन्म होते ही सिर से माँ का साया उठ गया और उसे जब एक जू में लाया गया था वहाँ उसका नाम पंच रखा गया और वहाँ के जू कीपर्स को भी लगा कि शायद जो दूसरे बड़े बंदर हैं वो उस बेबी मंकी को संभाल लेंगे, पर हुआ इसका उल्टा ही। उसे परिवार मिलने की बजाय उसे मिला तिरस्कार। बड़े बंदरों ने और दूसरे जो बंदर थे उसने उस बीवी मंकी को अपनाने से ही इनकार कर दिया था। मानो वो जैसे ही छोटा सा मंकी, छोटा सा वो बंदर का बच्चा जैसे ही उन बड़े बंदरों के पास जाने की कोशिश भी करता तो वो उसे वहां से खदेड़ देते थे। उस बेचारे छोटे बंदर की हालत पर तरस खाकर एक जू कीपर ने उसके लिए एक छोटा सा सॉफ्ट टॉय उसे दे दिया था। अब मानो वही सॉफ्ट टॉय उसके लिए उसका साथी, उसका इमोशनल एंकर और बाकी बंदरों से बचने के लिए उसकी ढाल भी बन गया था। पर फिलहाल आज ये सारी बातें वापस रिपीट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अब वो छोटा बंदर का बच्चा यूं ही छोटा नहीं रह गया, अब वो बड़ा हो गया है। और जू कीपर्स तो जो लगा था कि भाई बचपन में जो उसे इतनी ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा कह लीजिए या जो इस तरह से उसको जो तिरस्कार अवहेलना का सामना करना पड़ा था, शायद बड़ा हो करके उसके नेचर में भी वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, पर बात कुछ अलग हुई है। और वो क्या हुई है वो बताऊंगी, पर पहले सुनाऊंगी आपको ये गीत।

राहत फतेह अली खान, शंकर महादेवन, ऋचा शर्मा और साथियों की आवाज़ों में माय नेम इज़ खान फिल्म का ये गीत और आप लोगों के ये जो मैसेजेस हैं वो मुझ तक पहुंच रहे हैं और बाकायदा पता चल रहा है कि आप लोगों को आज के गाने बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और हम बात कर रहे थे आज कार्यक्रम लव यू जिंदगी में उस बेबी मंकी पंच के बारे में। अब जब वो बेबी मंकी या बेबी मंकी नहीं रह गया है, अब वो भी थोड़ा बड़ा हो गया है दोस्तों। बचपन में मिली इतनी अवहेलना, तिरस्कार और ठुकराए जाने के बावजूद पंच का जो स्वभाव है वो इसके बिल्कुल विपरीत हो गया है। बचपन में मिली इतनी कड़वाहट के बावजूद उसने अपने अंदर कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं आने दी। आज वो अपने आस पास बस प्यार और सिर्फ प्यार ही बांटता है। बचपन में जहाँ उसके आसपास बहुत से चेहरे थे, लेकिन अपना कहने वाला या वो जिसके पास जा सके ऐसा कोई भी नहीं था। उसे भी चाहिए था कि भाई कोई उसे अपने पास बिठाए, उसे वो माँ की गोद जो उसके पास नहीं रही थी वो गोद मिले। और शायद इसी वजह से बहुत ही छोटी उम्र में उस बंदर के बच्चे ने एक बात सीख ली कि अकेलापन क्या होता है। और इसीलिए आज पंच जब थोड़ा बड़ा हो गया है तो जब भी जू में कोई भी एक नन्हा बंदर के बच्चे को अगर लाया जाता है तो पंच उसकी देखरेख करने के लिए सबसे आगे होता है। जो उस पर बीती वो अब आने वाले जो छोटे बंदर के बच्चे होते हैं उन पर वो बिल्कुल वो बीतने नहीं देता है। उनके लिए वो ढाल बनकर खड़ा होता है, उनके लिए वो सपोर्ट सिस्टम बनता है जिसकी उसे अपने बचपन में तलाश थी। जिस तरह से उसे वो जो इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए थी, कोई ऐसा चाहिए था जो उसे भी गले लगा सके, जो उसे नहीं मिला वो सब कुछ वो आज की तारीख में आने वाले उन छोटे बंदर के बच्चों को देता है। कहते हैं ना, जिसने खुद कभी कमी का एहसास किया होता है उसे पता रहता है कि आखिर वो कमी कितनी खलती है, और इसीलिए दूसरों की जिंदगी में उस कमी को वो पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करता है। और शायद इसी वजह से, और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है कि किस तरह से हम ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बना सकते हैं बल्कि दूसरों की खूबसूरती को भी, दूसरों की ज़िंदगी में भी खूबसूरती ला सकते हैं।

0: सबके अलग है अंदाज,
1: कोई मजाकिया
2: तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
3: कोई लुभाए शेरो शायरी से
2: तो सुकून से भरी किसी की आवाज,
4: जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है।
1: अलग अलग अदाएं हैं सबकी खास, यही तो है FM रेनबो का राज।
0: 107.1 म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।

खट्टा मीठा इस फिल्म से दोस्तों ये गई। तभी आप सुन रहे थे के और सुनिधि चौहान की आवाज़ में, और इस मीठे से गीत को सुन करके सच में बहुत अच्छा और बहुत सुकून भी महसूस हुआ। और आप लोगों के जो मैसेजेस आ रहे हैं वो भी मैं पढ़ रही हूँ। ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आप जो मैसेजेस भेजते हैं वो यूं ही इग्नोर हो जाते हैं। अंधेरी ईस्ट से अंजू लिखती हैं कि भाई ये जो बेबी पंच की कहानी थी बहुत ही दिल को छू गई है। और ऐसी ही कुछ बात लिखी दीपा पालकर ने, लिखती हैं कि पंच बंदर की जो कहानी दिल को छू गई, जिसका कोई नहीं रहता है उसे ईश्वर किसी भी तरह का आधार दे ही देता है, और ऐसे लोग भविष्य में दूसरों का सहारा भी बनते हैं। वहीं अकोला से विजेंद्र घटोल लिखते हैं कि भाई जो कहानी है वो सच में बहुत पसंद आई, और साथ ही साथ आज के गाने भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। पंकज मोहड़ अमरावती से लिखते हैं कि बचपन की कड़वाहट और अवहेलना मिली, लेकिन बड़े होकर उसने दूसरों की जिंदगी में खुशियां बांटी। और प्रणव शिंदे का मैसेज आया है, लिखते हैं कि जीवन में सुख और दुख होना अनिवार्य है, क्योंकि ये दोनों सिक्के एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, जो मनुष्य को मानसिक, आध्यात्मिक और व्यावहारिक रूप से परिपक्व बनाते हैं। यदि जीवन में केवल एक ही भाव रहे तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। प्रणव, आपने बात तो बिल्कुल सही लिखी है, लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने लायक ये भी है कि कई बार जब बहुत ही छोटी उम्र में अगर हमें इतनी ज़्यादा कड़वाहट मिले, दिखे और अनुभव में आए ना, तो कई बार वो कड़वाहट, ये बहुत ज़्यादा हाई चांस होता है कि शायद वो कड़वाहट हमारे अंदर घर कर जाए। लेकिन एक परिपक्व आदमी, या यूं कह ले कि जो कहते हैं ना कि जिंदगी की जो किताब होती है, वो तभी हम कंप्लीट कर पाते हैं जब हम इन सारी ही चीज़ों से पार कर पाए। अगर उस कड़वाहट को हम अपने अंदर ना ले पाए, बल्कि उसको हम और मिठास में बदल दें। हमारे साथ जीवन में क्या हुआ ये हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे ये हमेशा हमारे हाथ में होता है। ये चॉइस हमेशा हमारे सामने होती है। बेबी पंच को किसी ने अकेला छोड़ा, लेकिन उसने आने वाले उन छोटे बेबी मंकीज को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ा, बल्कि उनका हाथ थामा। जिस प्यार की कमी को उसने महसूस किया अपने बचपन में, उसने वो कमी उन नन्हे

0: बंदरों के जीवन में बिल्कुल नहीं आने दी। और बस यही एक बात है जो हमें उस बेबी मंकी उस पंच की कहानी से सीखनी चाहिए, उसके जीवन से सीखनी चाहिए। 5:45 का वक्त, कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे पर इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: बात निकली है तो बड़ी दूर तक जाएगी।
5: पगली जीपीएस फॉलो करना, नहीं तो गुम हो जाएगी।
4: अगर गुम हो भी जाओ तो कोई बात नहीं।
5: बिल्कुल, क्योंकि पंछियों के पास भी कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी वो ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिलें।
4: हाय, ये है एफएम रेनबो 107.1। यूं ही खट्टी मीठी बातों से जीत लेंगे आपका मन,
5: क्योंकि हम हैं म्यूजिकली यर्स।

दोस्तों सुन रहे हैं आप कार्यक्रम लव यू जिंदगी अपनी आरजे दोस्त अमिता के साथ, और आज हमने बातें की उस बेबी मंकी पंच के बारे में। दोस्तों जिंदगी है, उतार चढ़ाव होंगे, कभी दर्द मिलेगा, कभी अकेलापन, तो कभी यूं भी हो सकता है कि लोग हमें छोड़कर चले जाएं, हमारा साथ ना दें। लेकिन फिर भी जिंदगी को प्यार करना मत छोड़िएगा, क्योंकि जिंदगी की खूबसूरती इस बात में नहीं है कि हमें क्या मिला, बल्कि इस बात में है कि हमारे पास जो था और हमने क्या चुना अपने आज में। क्या हमने कड़वाहट चुनी या मिठास, नफरत चुनी या प्यार, क्योंकि कभी कभी जिंदगी शायद हमें दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन हमें किसी और की जिंदगी में दूसरा मौका बनाकर जरूर भेजती है। और इन्हीं बातों के साथ आज का लव यू जिंदगी कार्यक्रम अब हम समेटते हैं, और आपको सुनाती हूँ मैं दो गाने बैक टू बैक, और यही कहूँगी कि जिंदगी से प्यार करना मत छोड़िए और कहते रहिए लव यू जिंदगी।

दोस्तों नमस्कार। शाम के ठीक 6:16 का वक्त और ये वक्त होता है अंदाज़े बयां का। कुछ ऐसे अल्फाज जो रूह तक पहुंच जाएं, कुछ ऐसे गीत जो सुकून दे जाएं। और अर्ज कर रही हूँ कुछ पंक्तियाँ आपके लिए। मुझको ये एहसास हुआ है उनसे नाता खास हुआ है, मुझको ये एहसास हुआ है उनसे नाता खास हुआ है, मेरा पर्चा उनके हाथों जैसे तैसे पास हुआ है। दो पल की भी दूरी उनसे सदियों का वनवास हो गई है, अपने मन का राजा देखो धीरे धीरे दास हुआ है। अपने मन का राजा देखो धीरे धीरे दास हुआ है। पहले इष्ट से भी दूजा इष्ट हो सकता है, आज हमें विश्वास हुआ है। मुझको ये एहसास हुआ है उनसे नाता खास हुआ है।

रॉक तक कनेक्शन है अपना दिल से दिल तक। सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंदाज़े बयां अपनी आरजे दोस्त अमिता के साथ। वो जो घंटों तक आसमान को तकते हैं, उन्होंने जमीन पर जरूर कुछ खोया होगा। किसी अपने के बिछड़ने का दर्द रहा होगा, तभी आंखों ने खामोशी को ओढ़ा होगा। जो लोग हर शाम तन्हा लौट आते हैं, उनके घर में किसी का इंतजार होता होगा। जो नाम लबों तक आकर रुक जाता है, उस नाम में कोई बिछड़ा हुआ होता होगा। जो लोग घंटों तक आसमान को तकते हैं, उन्होंने जमीन पर जरूर कुछ खोया होगा।

जिंदगी की उलझने हमारी शरारतें कम कर देती हैं। जिंदगी की उलझने हमारी शरारतें कम कर देती हैं और लोग समझते हैं कि हम समझदार हो गए।

दोस्तों, लैला मजनू फिल्म के इस गीत के साथ हम अंदाज़े बयां कार्यक्रम की इस महफिल को यहीं समाप्त करेंगे।

दोस्तों बता दें आपको कि ठीक 6:45 पर आप सुनेंगे कस्टमाइज्ड स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, इस कार्यक्रम का 8वां भाग।

0: We bring you a talk on Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme by Ankita Sarkar, Migration and Asylum Project, and Sanju Kumari, member One Stop Center. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
1: घरेलू हिंसा का अधिनियम है, टीवी एक्ट है, ये 2005 में आया है। तो पहला सवाल ये बनता है कि क्या औरतों के पास कोई तरीका नहीं था, कोई उपाय नहीं था अगर उनके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है तो कोई भी रिलीफ मांगने का या पाने का, और ऐसा तो नहीं है। तो क्या हुआ करता था कि हमारे पास क्रिमिनल लॉज हमेशा से थे, लेकिन घरेलू हिंसा का अधिनियम जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे एक क्वासी क्रिमिनल रेमेडी माना जाता है, और इसका ये मतलब है कि इस कानून के अंतर्गत क्रिमिनल लॉज के जो रेमेडीज है, जो रिलीफ है,

वो चले नहीं जाते हैं, बट ये उनके साथ साथ उनके उनको और मजबूत बनाने में कोशिश करते हैं। तो अब अगर हम सोचें कि घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो 2005 में आया क्यों, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, तो अगर हम एक्ट का थोड़ा मुआवजा करें तो हम देखेंगे कि इसमें पनिशमेंट जो है, सजा देना, इससे फोकस हटा के दूसरी चीजों पे फोकस कई ज्यादा दिया गया है कि हम सुरक्षा कैसे करें, रेसिडेंस का किस तरह से करा जाए, क्या टेम्परेरी कस्टडी की क्या बात हो सकती है, मॉनिटरी रिलीफ यानी कि पैसों के भरण पोषण की जो सुविधाएं हैं वो, इन टाइप के प्रोसेसेस कैसे किए जा सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी हम डीवी एक्ट के अंतर्गत देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम क्यों आंसर करना चाहेंगे एक एक्ट के अंतर्गत, जब हमारे पास सजा देने की, जो जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने गुनाह किया है, उनको सजा देने का मौका है। पहला सवाल ये है कि पीड़िता को किस चीज की जरूरत है, और ये जो सोच है इसे हम सर्वाइवल सेंट्रिक प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, या पीड़िता को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से कानून बनाए जा सकते हैं, ये एक नजरिया हम इस एक्ट के अंतर्गत हम देख सकते हैं। और कोई भी पीड़िता को अगर वो घर छोड़ रही है किसी भी कानूनी घरेलू हिंसा की वजह से, तो पहली चीज उनको जरूरत हो सकती है कि उनको सुरक्षा रहे और घरेलू हिंसा उनके साथ ना हो, या फिर उन्हें दिन ब दिन डे टू डे भरण पोषण की जरूरत हो सकती है, बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, ये सवाल आते हैं। सो पीड़िता की जो नीड्स है वो कहीं ना कहीं डीवी एक्ट कई ज्यादा आंसर कर पाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाती है, जिस तरह से क्रिमिनल लॉज कई बार सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए पहला जो एंट्री पॉइंट है किसी भी पीड़िता के लिए वो डीवी एक्ट के अंतर्गत काफी आसान बनाया गया है। इसके अंतर्गत एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है वो ये है कि कहीं भी एक्सेस टू जस्टिस की जहां हम बात करते हैं, तो किसी भी पीड़िता के लिए कोर्ट आना अपने घर से निकल के, ये रास्ता भी काफी लंबा होता है। जो भी सोसाइटल प्रेशर्स हो, फैमिली प्रेशर्स हो, खुद के अपने अंतर्गत ये हो कि हमने रिलेशंस खराब नहीं करने हैं, हमारे बच्चों का ध्यान रखना है, ये सारे जो हमारे फैमिली यूनिट के प्रेशर्स होते हैं, ये सारों को निकल के कोर्ट तक पहुंचना, ये रास्ता भी काफी लंबा होता है। और इसके लिए ना कि ये सिर्फ जरूरत है कि हमारे हम पीड़िता को बोले कि आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, बट ओवरऑल जैसे हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में जागरूकता होनी चाहिए ताकि पीड़िता को उस तरह का सपोर्ट भी मिल पाए। तो कम्युनिटी लेवल पे हम किस तरह से ये जागरूकता बढ़ा सके, ये एक्सेप्टेंस ला सके कि कल को जाके अगर कोई पीड़िता आगे आती है तो उन्हें बैकलैश ना फेस करना पड़े, उन्हें जितना कम रेजिस्टेंस हो सके उतना वो फेस करे, और आगे आके जुडिशियल सिस्टम जो है, चाहे वो लीगल एड के तौर पे हो, चाहे वो किसी तरह से किसी प्रोबोनो सपोर्ट के थ्रू हो, वो उसको एक्सेस कैसे कर सके, पीड़िता आके रिपोर्ट कर सके, तो उसके लिए उस तरह का माहौल भी बनाना एंटायर सोसाइटल स्ट्रक्चर में, जहाँ वो निकल के सेफ फील कर सके, सुरक्षित फील कर सके रिपोर्ट करने में और कानूनी मदद लेने में, ये एक माहौल बनाने का किस तरह से हम आगे स्टेप्स ले सकते हैं, ये सोचना भी जरूरी है। तो सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन में ये हम नहीं सोचेंगे कि सिर्फ आखिरी रिजल्ट क्या होगा, क्या ऑर्डर मिल सकता है, क्या फायदा हो सकता है, या आउटकम क्या है, बट क्या हम पीड़िता को कोशिश कर रहे हैं कि वो जिस समय पे चाहती है रिलीफ, उस समय पे उसे वो रिलीफ मिल सके, जिस चॉइस की रिलीफ वो चाहती है, चाहे वो उस घर में रह के ही वो अपना केस चलाना चाहती है तो हो सकता है शेयर्ड हाउसहोल्ड का ऑर्डर हो, या चाहे वो किसी और घर में रह के अपना सुरक्षा रखना चाहती है, या फिर वो किसी तरह से अगर उसके साथ वापस घरेलू हिंसा होता है तो उसका प्रोटेक्शन मांग सकती है। हम संजू मैम से सुनेंगे कि पहले तो कि क्या एक्ट के अंतर्गत जैसे मैंने बताया कि कुछ अलग अलग प्रोटेक्शंस है सिर्फ सजा के बिना, तो ये क्या क्या प्रोटेक्शंस है, और क्या ये प्रोटेक्शंस जब हम क्रिमिनल लॉज में देख रहे हैं तो हम मेनली मैरिज या मैरिटल स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, क्या डीवी का प्रोटेक्शन मैरिज के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है, कौन से और रिलेशनशिप्स होते हैं, कौन से और ऐसे नाते रिश्ते नाते होते हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं डीवी के अंतर्गत, और इन प्रोटेक्शंस को लेने में डे टू डे ओएससी का जो इंटरवेंशन है वो किस तरह के चैलेंजेस देख रहे हैं, या पीड़िता किस तरह की
रेमेडीज मांग रही है, जिसमें ओएससी का मदद होता है।

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of Department of Justice on Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme.
2: Sakhi One Stop Center, Central Ministry की scheme है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसकी overall India में 700 से 800 centers run कर रहे हैं, दिल्ली में ही 11 centers हैं और ये जिला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत भी आती है, उनकी देख रेख में चलते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर एक्सेस करता नहीं था उस समय, महिलाओं को अपनी अवेयरनेस नहीं थी कि क्या करना है, कैसे करना है, कोर्ट जाने में वो बहुत घबराती थी, डरती थी, लेकिन सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत जब वो आई हैं तो इस स्कीम में महिलाओं को एक अवेयरनेस मिली है। हम डे टू डे लोकल अवेयरनेस करते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं और उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि सखी वन स्टॉप सेंटर के अंदर अगर आप आएंगी तो उनकी जो भी गोपनीयता है उसको बरकरार रखा जाएगा। वो बहुत ज़्यादा घबराती हैं इस बात को लेकर कि अगर परिवार में या सोसाइटी में ये चला जाता है, जो एक स्टिग्मा है कि हमारी बात लीक हो जाएगी, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड अगर वो आती है हमसे बात करने के लिए तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि हमारी जो अब अभी मैं FIR या लीगल प्रोसीजर में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन जो उनका है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए वहाँ पर साइकोसोशल काउंसलर्स भी अवेलेबल होते हैं। मैं सखी वन स्टॉप सेंटर के स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ी सी रूपरेखा बता देती हूँ। सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर, सोशल काउंसलर्स और पैरालीगल वर्कर्स भी होते हैं, साथ में ही विधिक सहायता के लिए वहाँ पर डालसा से ही रोस्टर लगते हैं, ऑल द टाइम लॉयर्स अवेलेबल होते हैं 10 to 5 की शिफ्ट में और उस दौरान जो भी सर्वाइवर या जो भी महिला हमारे पास आती है हम उनको जो भी लीगल अवेयरनेस अगर वो चाहती है, लीगल एड चाहती है तो हम उसको वन रूम फैसिलिटी देते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर का मोटो ही वन रूम फैसिलिटी देना है, उसको उसी प्रेमिसेस में मेडिकल भी प्रोवाइड होगा, उसको उसी प्रेमिसेस में लीगल काउंसलिंग भी प्रोवाइड होगी, काउंसलिंग भी वही होगी और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि परिवार से या पति से वो निकाल दी गई है, घर से निकाल दी गई है, रात के 2 बजे भी निकाल दी गई है तो 181 हेल्पलाइन के द्वारा उनको पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में सखी वन स्टॉप सेंटर में लाया जाता है। मैं यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि पहले 5 दिन का सेंटर मिलता था परंतु अभी बढ़ा कर ये सेंटर 20 दिन का कर दिया गया है ताकि उसे कहीं पर भी बिना आश्रय के ना रहना पड़े, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी वहीं पर मौजूद स्टाफ के द्वारा देखी जाती है, वहां पर पुलिस की मौजूदगी भी रहती है जिसे PFO बोला जाता है, पुलिस प्रोटेक्शन ऑफिसर, वो वहां पर उसकी कंप्लेन लोकल थाने में रजिस्टर कराते हैं, साथ ही साथ उसकी DD एंट्री या FIR दर्ज कराने में जो भी मदद चाहती है वो उसको बहुत इजी प्रोसेस के द्वारा मदद कर देते हैं। साथ ही वहां पर आश्रय में कपड़ा, खाना एवं मेडिकल फैसिलिटी, अगर उसको उस दौरान कोई मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है तो वो भी उसको प्रोवाइड की जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी होती है, कौन सी महिलाएं एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इजी टू मूव सखी वन स्टॉप सेंटर में, कोई एज ग्रुप नहीं है, कोई एज बार नहीं है, आप आ सकते हैं किसी भी टाइम पर, 60 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक का बच्चा वो आ सकता है, कोई भी, इवन उससे छोटे बच्चे भी वहां पर आ सकते हैं और उस दौरान भी हम उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट यानी कि चाइल्ड लाइन से कोलैब करा देते हैं, उसके द्वारा वहाँ पे काउंसलर्स जो चाइल्ड लाइन के आते हैं वो भी आते हैं, 181 हेल्पलाइन किसी भी प्रकार के लिए महिलाओं के लिए एकदम अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब बात करते हैं सामाजिक परिवेश में, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं हों या फिर घरेलू हिंसा से रिलेटेड कोई भी, चाहे 20 साल हो गए हो शादी को या 25 साल हो गए हो या 2 ही महीने क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की हिंसा जो भी है, कई बार मैंने अवेयरनेस के

0: या हमारी वन स्टॉप सेंटर में जो महिलाएं आती हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि घरेलू हिंसा के प्रकार क्या हैं, उन्हें इमोशनल हिंसा पता ही नहीं होती है। उनको ये लगता है कि बस गाली गलौज कोई बात नहीं है, पर वो बहुत इजीली मान लेती है गाली गलौज कोई बात नहीं है। सिर्फ उनके लिए हिंसा वही होती है जिससे मार दिया गया है, खून निकल गया है, वही उनके लिए एक हिंसा होती है। जब हम उनको बताते हैं कि इकोनॉमिकल हिंसा भी होती है कि आप कमा रहे हैं लेकिन आप अपनी पसंद से खर्चा नहीं कर सकते, वो भी एक हिंसा होती है। जो समय समय पर हम छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, मैंने मैप में एनजीओ के साथ में या फिर हमारे जो लोकल एनजीओस वहाँ पे जो भी काम करते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में, अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट में है अजय कुमार जी, उनके सुपरविजन में बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए हैं, वहाँ पर से बहुत सारी महिलाएं निकल के आती हैं। मैं आपको सिर्फ बताना चाहूँगी यहाँ पर मुख्य वजह होती है कि उनके पास एजुकेशन की प्रॉब्लम है, एजुकेशन बहुत कम है। एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बावजूद भी महिलाएं एजुकेशन तक रीच ही नहीं कर पा रही है, कई बार ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, कई बार अलॉटमेंट्स के हो जाते हैं, कई बार पेरेंट्स के पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो फ्री एजुकेशन होने के बावजूद भी अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेज पा रहे। तो हम स्कूल के साथ में समय समय पर ऐसे काउंसलिंग सेशंस करते रहते हैं ताकि एजुकेशन का महत्व उन बच्चों को समझाया जा सके। कुछ होता है सामाजिक परिवेश, कि कुछ सामाजिक परिवेश में ये होता है कि हम ज्यादा लड़कियों को पढ़ाएंगे तो वो बिगड़ सकती हैं, जो कि उनकी पेरेंटिंग काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है, तो सखी वन स्टॉप सेंटर पेरेंटिंग काउंसलिंग भी करता है। अब बात आती है कि वो किस किस अधिनियम के तहत जा सकती हैं, तो हम उन महिलाओं को ये समझाते हैं कि अगर आपका शेयर हाउस होल्ड है वहां पर भी आप उनका रेसिडेंशियल राइट ले सकते हैं, आश्रय का आपको अधिकार है, आप मेंटेनेंस के लिए फाइल कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करता कि शादी को कितना समय हो गया, आप अर्न करती हैं या नहीं करती हैं। पहले तो आप अपने उस परिवेश से निकलने की कोशिश करिए जब आपके साथ जो भी किस्म की हिंसा हो रही है उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं अपने काउंसलिंग सेशंस में हमेशा महिलाओं को बोलती हूँ कि जो भी हिंसा आप सहन करोगे तो सामने वाले को और बढ़ावा मिलता है। हिंसा कभी भी सहन नहीं की जाती है, पहले भी कई बार होता है नो का मतलब नो, तो पुरुषों को भी ये चीज समझनी पड़ेगी। और ये चीज हम काउंसलिंग में भी समझाते हैं कि अगर महिला किसी भी तरीके से नो कर रही है तो इसका मतलब नो ही है, नो का मतलब यस कभी नहीं हो सकता। होप कि आने वाले समय पर ऐसे सेंटर्स की जो भी एक्सेस मतलब बहुत इजी टू रीच हो महिलाओं के लिए, और ऐसे सेंटर्स में किसी भी प्रकार का कोई सारा फीमेल स्टाफ रहता है तो सर्वाइवर्स बहुत इजी से आकर अपनी बातें बता देती हैं। कई बार वो ऐसी बातें भी बता देती हैं जिनको वो कहती है कि मैडम नोट मत कीजिएगा कैसे लिखते, क्योंकि मैं तो ये आपसे फैमिलियर होकर ही बता रही हूँ। तो वन स्टॉप सेंटर का एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग सेंटर में विजिट करें तो अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद।
1: यू हैड बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme by Ankita Sarkar, Migration and Asylum Project and Sanju Kumari, member, One Stop Center. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: दोस्तों नमस्कार, शाम के ठीक 7:11 का वक्त, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त अमिता। और आइए शुरू करते हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम हम तुम, जहां हम पूरी करते हैं आपकी फरमाइश। और अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 8657661071, यानी कि 8657661071। और कार्यक्रम हम तुम की शुरुआत करेंगे हम एक पसंद के साथ, पर उससे पहले भाई आज 16 अगस्त का दिन और आज अपना हैप्पी वाला बर्थडे मना रही हैं जानी मानी अभिनेत्री मनीषा कोइराला। और FM रेनबो परिवार की तरफ से भी हम उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे। एक अलग अंदाज में सुनेंगे उनकी फिल्म अग्नि साक्षी का ये गीत और साथ ही साथ करते हैं उन्हें हैप्पी बर्थडे।

प्रकाश शिंदे और प्रमोद चिंचोलकर की पसंद पर अग्निसाक्षी फिल्म का ये गीत। और अगला गीत आ रहा है मन फिल्म से, और इस गीत की फरमाइश हम तक भेजी है दीपा पालकर ने मुंबई से, साथ ही साथ इंदौर से अजय साकरे ने और संजय पाटिल ने।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो।
1: बेवजह, बेपरवाह, बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक।
0: सुनते रहिए 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
1: म्यूजिकली योर्स।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में हिना फिल्म का ये गीत और पसंद थी अरविंद कुलकर्णी की, साथ ही साथ देहरादून से मुकेश वालिया और वानगांव से भूषण सोनावने ने भी इस गीत को सुनना चाहा था। और अब अगला गीत परिंदा फिल्म का, जिसकी फरमाइश आई है अहमदाबाद से ध्रुव सिन्हा और मुंबई से नेमिश शाह की।

0: दोस्तों बता दें आपको कि ठीक 7:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम फार्म सिटी माइक्रो ग्रीन एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली फूड।
1: श्रोते हो सादर करीत आहोत कृषि आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम फार्म टू सिटी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा।

0: हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
1: परम तो सभी डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: श्रोते हो, आत्ताच आपण कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम फार्म टू सिटी ऐकलात। या कार्यक्रमाचे सादरकर्ते होते रोशन जाधव।

0: Oh, can I say, Robert Plant's birthday on the 20th of August. We played this one for him. We've got exactly about 10 seconds before we take our news break. Remember, 30 minutes, we will be musically yours. We come back at 9:15. Remember to punch in your numbers, your messages. 865-766-1071. Is that on? 865-766-1071.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी. गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया. कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया. भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया. 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार. पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट. यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत. महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की. और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू. पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे. अब समाचार विस्तार से. गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है. श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.
3: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े. आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया.
2: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं.
3: 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो. आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है.
2: श्री शाह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता है और गुजरात के किसानों ने इसे साबित कर दिखाया है. उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों की नस्लें राजस्थान के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा. इस अवसर पर गृह मंत्री ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भी अंतरित की. इससे पहले गृह मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया. पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की. उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी. प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका को अतुलनीय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है।
4: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship, and critical thinking. I am pleased to note SRM growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will save the economics and the society's future.
2: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। NTA ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
5: लगभग 3 किलोमीटर लंबी यह रणनीतिक सुरंग कालीधार पर्वत श्रृंखला के बीच बनाई गई है। इसके शुरू होने से मौजूदा मार्ग में कठिन हिस्से को बाईपास किया जा सकेगा और यात्रा की दूरी करीब 13 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा का समय भी काफी कम होगा। यह सुरंग ऐसे समय में खोली गई है जब अखनूर से राजौरी होकर पुंछ जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए ही खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। जम्मू से N गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
2: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में 1950 बीमारियां शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेमा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेमा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चिकित्सकीय मार्गदर्शन पर आधारित चिकित्सा पद्धति पर बल दिया है। नई दिल्ली में प्रोफेसर आनंद एन मालवीय और डॉक्टर प्रशांत कौशिक की पुस्तक रूमेटोलॉजी एसेंशियल्स अ न्यू फ्रंटियर फॉर एस्पायरिंग क्लिनिशियंस के विमोचन के अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिआयामी दृष्टिकोण अनावश्यक दवाओं का उपयोग करने, जाँच कम करने, निदान में देरी को रोकने और ये सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि मरीज सही समय पर उचित विशेषज्ञ से परामर्श ले सके। राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
6: DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकरों और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जाँच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
7: उड़ीसा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 49 ब्लॉक और 5 शहरी

0: केक प्रभावित है और लगभग 2.37 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित इलाकों में करीब 293 राहत शिविर चल रहे हैं। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर जिलों में तैनात किया गया है, जबकि प्रभावित जिलों की मदद के लिए एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा गया है। भद्रक, केंद्र और मयूरभंज जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीद होंगी। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches development projects worth over 6,400 crore rupees at Alwar in Rajasthan, asserts empowering youth, poor, women and farmers essential for achieving goal of developed India by 2047. Vice President C.P. Radhakrishnan calls upon students to embrace nation first and contribute to Viksit Bharat 2047. India dismantles large-scale areca nut import racket from Bangladesh, uncovering 2,500 crore rupees revenue loss, 9 arrested. Red alert issued for very heavy rainfall over Gangetic, West Bengal and Odisha tomorrow. Ukraine and Russia exchange missile and drone strikes, claiming 11 lives on both sides. In hockey, India begin campaign with 2-2 draw against China in FIH Women's World Cup in the Netherlands. And BWF Badminton World Championships start in New Delhi tomorrow. PV Sindhu and Lakshya Sen lead the India's challenge. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan after laying the foundation stones for and inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state.
3: If we want to make India a fully developed nation by 2047, we need to empower the youth, the poor, farmers and women. With this objective, farmers are being provided with the Kisan Samman Nidhi scheme benefits. Dairy facilities worth 500 crore rupees are being established for livestock. Employment opportunities are being created for the youth, and the BJP government has taken steps to expand Saras Dairy for women.
4: आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
2: He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026, the Modi government had introduced

0: coming up from the park. Hey, it's the song of the kids.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार में मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
2: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
1: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्ण ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज UGC नीट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की भी शुरुआत की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य के स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशहरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त

जी हाँ, कुछ तो ज़िंदगी में ऐसा होना चाहिए जो जैसे देख कर, जैसे महसूस कर कर हमें सुकून मिले और अपने दिल की बात अब वहाँ तक पहुँचे। इनके लिए कुछ चिट्ठियाँ सिर्फ कागज़ नहीं होती, उनमें बीते लम्हों की खुशबू और अपनों की आवाज़ बसती है। बिना कुछ कहे बात वहाँ तक पहुँचती है, लफ्ज़ कागज़ पर उतरते गए, दिल की बात बनती गई। एक चिट्ठी क्या मिली, जैसे कोई पुरानी याद मिल गई। बेहद बेहद प्यारी गज़ल महसूस कीजिए इसे।

0: चिट्ठियाँ भी बड़े कमाल की होती हैं, इनमें सिर्फ शब्द नहीं, किसी का इंतज़ार, किसी की याद और दिल के अनकही बातें कैद होती हैं। बहरहाल आप सुन रहे हैं रंगे महफिल सीमा के साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

खत बहाना था एक बात दिल तक पहुंचाने का, वरना इंतजार तो आज भी है किसी अपने के लौट आने का।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।

0: बागों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: चांद के बाद अब सितारों की तरफ क्या देखूं, जब मेरी नजरें ही उस चेहरे पर ठहर गई हैं जो मेरे लिए पूरी कायनात से भी ज्यादा खूबसूरत है। आकाशवाणी FM रेनबो पर सुन रहे हैं रंगे महफिल, मेरी यानी सीमा के साथ।

0: हम सभी की जिंदगी की कहानी अलग है, हमारे रास्ते अलग हैं, हमारी मंजिलें अलग हैं, लेकिन जब ये सब सारे रंग एक जगह मिलते हैं तो एक खूबसूरत सी महफिल सजती है। और शायद यही तो इस महफिल की शान है कि यहाँ हर एक चेहरा अपनी कहानी है, हर मुलाकात में एक याद है और हर रिश्ता इस खूबसूरत सफर का एक रंग। जी हाँ, हमारे साथ भी ये रंगी महफिल का सफर लगातार जारी है, जिसमें सुन रहे हैं आप एक के बाद एक प्यारे से गजल और याद कर रहे हैं कुछ पुरानी, कुछ बीती, कुछ बातें। बहरहाल हम आगे बढ़े अपने इस प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा ब्रेक और वापस जुड़ेंगे बहुत जल्दी। तब तक जाइएगा नहीं, सुनते रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो पर 102.6 मेगाहर्ट्ज दिल्ली और एनसीआर में। आप इसी फ्रिक्वेंसी पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देश के तमाम हिस्सों में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हम आपके साथ लगातार कनेक्ट हैं।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

शेयर करूं आपके साथ, साझा करूं आपके साथ, शायद आपको भी कुछ याद आ जाए। कभी बचपन में कागज की एक छोटी सी कश्ती बनाकर उसे बारिश के पानी में बहाया था। तब कहां पता था कि वो कश्ती सिर्फ कागज की नहीं, हमारी मासूमियत और अनगिनत सपनों की भी थी। कागज की कश्ती थी, बारिश का पानी था, वो बचपन भी क्या खूब था, जहां हर ख्वाब सुहाना था। आज भी जब कभी बारिश होती है तो दिल चाहता है कि एक बार फिर वो कागज की कश्ती बनाऊं और उसके साथ अपनी सारी फिक्रें बहा दूं। क्या आपका भी दिल ऐसा चाहता है? यदि हाँ तो सुनिए फिर इस गजल को, और यदि नहीं तो भी सुनिए इस गजल को, एंजॉय करना है क्योंकि बहुत ही प्यारे गजल है।

0: रंगे महफिल सुन रहे हैं आप, आपकी दोस्त आपकी होस्ट सीमा के साथ। जिंदगी भी इतने खूबसूरत है, हो भी क्यों ना इसमें अलग अलग रंग जो है, कभी हंसी के रंग, कभी दोस्ती के रंग, कभी रिश्तों की मिठास, तो कभी कुछ अनकही यादों के रंग, और इन सभी से मिलकर बनती है एक खूबसूरत से प्यारी जिंदगी। लेकिन हमेशा खुशियाँ ही हो ऐसा तो जिंदगी में नहीं होता, कभी कभी दुख, कभी परेशानी, इन सभी का एक मिश्रण तैयार होता है और बन जाती है जिंदगी। बहरहाल जिंदगी पर होंगी और भी बातें, लेकिन उससे पहले यहाँ पर लेंगे हम छोटा सा ब्रेक। जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए आकाशवाणी FM रेनबो पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
0: एक दीवाने को आए हम समझाने, मगर इश्क में डूबे दिल को भी भला कौन समझा सकता है, कौन समझा पाया है। हमने कहा थोड़ा संभल जाओ, वो मुस्कुरा कर बोला इश्क में संभलना नहीं बस बिखरना आता है। समझाने वाले तो बहुत मिले इस दिल को, मगर इश्क की जिद थी बस उसी का नाम रहे। कभी कभी किसी दीवाने को समझाना भी कितना खूबसूरत होता है, क्या कभी महसूस किया है आपने? क्योंकि उसकी आंखों में अपनी मोहब्बत की एक अलग ही कहानी दिखाई देती है। और आइए देखते हैं, यहाँ पर सुनते हैं उस कहानी को।

साथ स्टूडियो के मैडम टिकटिक इशारा कर रही है। यहाँ पर समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का इस वादे के साथ, बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत सीमा चौधरी को, नमस्कार।

ये थे रंगे महफिल के साथ सीमा, एक खूबसूरत शो बहुत ही नवाजिश के साथ, अदायगी के साथ इन्होंने ये प्रोग्राम किया। और अब

चूंकि कैलेंडर का दिन बदल चुका है, घड़ियों की सुइयां भी बदल चुकी हैं, और अब इशारा हो चुका है कि कुछ ही देर बाद हम लेकर आए आपके लिए प्रोग्राम जीरो और शो इसी चैनल पर। लेकिन उससे पहले पेश है अब तक की मुख्य समाचार हेडलाइंस। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की पीने के पानी की गुणवत्ता पर आई रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरे रेलवे नेटवर्क में पीने के पानी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यात्रियों के लिए स्वच्छ पीने का पानी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में, जबकि कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाजशास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने DTC बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए पेपर बेस्ड पिंक टिकट की व्यवस्था को 31 अगस्त तक बढ़ाया है। राष्ट्रपति भवन परिसर में अमृत उद्यान 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुल गया है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ये उद्यान खुला रहेगा। उद्यान में शाम 5 बजे तक प्रवेश किया जा सकेगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। इस पुरस्कार के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। और गाले में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके साथ ही साथ हम उपलब्ध हैं न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी, जहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें सुन सकते हैं देश और दुनिया के हर कोने, हर हिस्से से। फिलहाल रजत शर्मा कर रहा है आपका स्वागत जीरो और शो में। कुछ ही देर में हाजिर होते हैं खूबसूरत गानों के साथ और अपने मैसेजेस के साथ, जो कि आप हमें भेजते रहते हैं 9868107070 पर।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केग की पीने के पानी की गुणवत्ता पर आई रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरे रेलवे नेटवर्क में पीने के पानी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यात्रियों के लिए स्वच्छ पीने का पानी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में, जबकि कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाजशास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से

दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए पेपर बेस्ड पिंक टिकट की व्यवस्था को 31 अगस्त तक बढ़ाया। राष्ट्रपति भवन परिसर में अमृत उद्यान 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुल गया है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। उद्यान में शाम 5 बजे तक प्रवेश किया जा सकता है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। इस पुरस्कार के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। BWF मिश्र बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता 30 अगस्त तक चलेगी। और गोल्फ में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: 1:03 और 20 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम सुहानी रात।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: कोयल सी तेरी बोली,
3: आए हाय,
2: तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

सगरे गाँव की गोरिया पुछू पुछू मैं छोड़ रहा।

रात्रि के 2 बजे हैं। प्रस्तुत हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केग की पीने के पानी की गुणवत्ता पर आई रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरे रेलवे नेटवर्क में पीने के पानी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यात्रियों के लिए स्वच्छ पीने का पानी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह फैसला लिया गया। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में, जबकि कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाजशास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने DTC बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए पेपर बेस्ड पिंक टिकट की व्यवस्था को 31 अगस्त तक बढ़ाया। राष्ट्रपति भवन परिसर में अमृत उद्यान 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुल गया है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। उद्यान में शाम 5 बजे तक प्रवेश किया जा सकता है। एयर इंडिया की विशाखापट्टनम आने जाने वाली सभी उड़ानों का संचालन आज से भोगपुरम में

नए अल्लूरी सीताराम रंजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगा। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। FIH हॉकी विश्व कप 2026 में आज भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होगा और गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 408 रन बनाए। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: समय 2:08 और ये वक्त है भुलाए ना बने कार्यक्रम का, जो शुरू हो चुका है इस खूबसूरत गाने के साथ हल्का याग्निक की आवाज में। आकाशवाणी रेनबो 102.6 आपने ट्यून इन किया है, और जैसा मैंने बताया प्रोग्राम है भुलाए ना बने इस घंटे का शो, और इसमें आप मेरे साथ शिरकत कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम को आप इस फ्रीक्वेंसी के अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। अगर यह ऐप नहीं डाली है अभी तक जनाब अपने फ़ोन वगैरह या डिवाइस में किसी में भी, तो अभी डालें और एंजॉय करें, लुत्फ़ उठाएं हमारे सभी कार्यक्रमों का एफएम रेनबो 102.6 पर। और इसके अलावा बहुत सारे मैसेजेस तो आपके मिलते ही हैं हमें, और अच्छा लगता है आपके मैसेजेस देखकर, जिस तरह काफ़ी लोगों ने आज आए हुए हैं। और मैं बता दूं इस वक्त जो मैसेज चल रहा है, नाम नहीं दिए हुए हैं लोगों ने, और आप अगर नाम बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा ना, धन्यवाद करने में आसानी रहेगी। रिया जुड़ी हमारे साथ दिल्ली से, राजकुमार जी एम राजकुमार साहब हमारे नियमित श्रोता नियमित दोस्त ये जुड़े हैं, और अच्छा लग रहा है, बढ़िया लगा आपको देखकर, और आप खैरियत के साथ रहें और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी शुभकामना के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नया मोड़। बहुत अच्छे गानों को लेकर आऊँगा, ये वादा ज़रूर कर रहा हूँ अपने हर शो की तरह, और उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा, आप इस थोड़ा सा तरोताज़ा फील करेंगे और हौसला याफ्ता भी फील करेंगे, ये कोशिश रहती है हमारी, आज भी रहेगी।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 से 9 तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती। सुबह सवेरे 7-9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म।

टू सिटी एफएम रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार एफएम रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

पुराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: राजेश भलावी जी हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में, गांव घोटी जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से। रिया जी हमारे साथ लगातार हैं, मैसेजेस पर आ ही रहे हैं आपके मैसेजेस। एम राजकुमार साहब ने भी अपनी शुभकामनाएं भेजी और उन्होंने ये भी कहा कि रिया जी को भी सुनकर अच्छा लगा इतने टाइम बाद, और उनके लिए शुभकामनाएं, वो ठीक रहें, सकुशल रहें। एक और मैसेज है लेकिन इसमें नाम नहीं है, लेकिन हेलो आकाशवाणी लिखा है इन्होंने, काफ़ी देर पहले का ये मैसेज है। इसके अलावा भी काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिशें की भी हैं, लेकिन बिना नाम के, वो थोड़ा सा असहज हो जाता है। आपके नाम होंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमारे बाकी दोस्तों को भी अच्छा लगेगा, नए दोस्त बनेंगे एक शो के ज़रिए से, एक ख़ास चैनल के लिए ज़रिए। और उम्मीद है आपको प्रोग्राम हमारा पसंद आ रहा होगा। भुलाना बने का मकसद यही है कि ऐसी वो बातें जो भूले नहीं बनती, ऐसे वो गीत मुलाकातें जो भुलाए नहीं बनती, ऐसे कार्यक्रमों, ऐसे लोग बातों को हम संयोजन के साथ यहाँ लाते हैं। समय हुआ है 2:52 कुछ सेकंड्स, जारी रहेगा प्रोग्राम, एक और प्रस्तुति होगी, उसके बाद जुड़िएगा हमारे साथ मिडनाइट मेलोडीज में ठीक 3 बजे समाचारों के बाद आखिरी प्रस्तुति के साथ। मैं रजत ले रहा हूँ विदा इस शो से, जुड़े रहिए, सुनते रहिए हमारे साथ।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी के

0: तरह का सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

प्रस्तुत है एफ बेरेनबो मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की पीने के पानी की गुणवत्ता पर आई रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरे रेलवे नेटवर्क में पीने के पानी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यात्रियों के लिए स्वच्छ पीने का पानी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यूजीसी नेट के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की परीक्षा दोबारा होगी। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जबकि कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। समाजशास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए पेपर बेस्ड पिंक टिकट की व्यवस्था को 31 अगस्त तक बढ़ाया। राष्ट्रपति भवन परिसर में अमृत उद्यान 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुल गया है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। उद्यान में शाम 5 बजे तक प्रवेश किया जा सकता है। एयर इंडिया की विशाखापट्टनम आने जाने वाली सभी उड़ानों का संचालन आज से भोगपुरम में नए अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगा। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। FIH हॉकी विश्व कप 2026 में आज भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होगा और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: 3:03 और 10 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: गारे गारे
1: ये गारा बड़ा जी
0: गारे गारे
1: ये सूर बदल
0: गया गारे गारे
1: ये हमको बटका
0: गारे गारे
1: ये सूर की तरह जी ये सूर ये इन्ना

एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

सुबह के 4 बज चुके हैं। लीजिए पेश हैं एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की पीने के पानी की गुणवत्ता पर आई रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरे रेलवे नेटवर्क में पीने के पानी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यात्रियों के लिए स्वच्छ पीने का पानी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। एनटीए यूजीसी नेट के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा। अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र का पेपर 10 सितंबर को होगा। जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों और लद्दाख में आगामी जनगणना 2027 के लिए आज से सेल्फ एन्यूमरेशन यानी खुद जानकारी भरने की सुविधा शुरू होगी जो कि 31 अगस्त तक जारी रहेगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए पेपर बेस्ड पिंक टिकट की व्यवस्था को 31 अगस्त तक बढ़ाया। एयर इंडिया की विशाखापट्टनम आने जाने वाली सभी उड़ानों का संचालन आज से भोगपुरम में नए अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगा। गाजा में युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की नई कूटनीतिक कोशिश के अंतर्गत अमेरिकी वार्ताकार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर ने हमास के प्रमुख के साथ बैठक की। कुशनर आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। और गाले टेस्ट मैच के 3rd दिन आज भारत अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। कल का खेल खत्म होने तक प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव क्रीज पर थे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। 4:02 हो चुके हैं और कार्यक्रम का वक्त हो चला है सारे गामा। नए पुराने गीतों के इस सजीले सुनहरे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर आप जुड़े हैं। आप सभी श्रोता मित्रों का हार्दिक स्वागत। और जो हमारे साथ न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हैं, हमारे सामयिन, हमारे लिसनर्स, उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस

0: विशेष पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पीने के पानी की गुणवत्ता पर आई रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरे रेलवे नेटवर्क में पीने के पानी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यात्रियों के लिए स्वच्छ पीने का पानी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA UGC नेट के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा। अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र का पेपर

पे जिन पते पूजाद्भुतं तद्भवैः संगीतस्तुतिमंगलैः